FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन EIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं स्वामी रामतीर्थ के विचार।
2: दूसरों में दोष या त्रुटियां निकालने

0: का प्रयास करते हैं तो आप मानो अपनी ओर दोष और त्रुटियों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब आप किसी की निंदा करते हैं या उसका कोई दोष निकालते हैं तो उनमें से कुछ आप में भी आ जाएंगे। यही विधान है। दूसरों में खोट न निकालना, ये इतना दूसरों को दोष से नहीं बचाता जितना कि स्वयं अपने आप को। आपको इन दूसरों में दोष को निकालने वाली छिद्रान्वेषी मनोवृत्ति से अवश्य ऊपर उठना चाहिए। सदा याद रखिए कि ईर्ष्या, द्वेष, छिद्रान्वेषण तथा खोट निकालने वाले विचार या ऐसे विचार जिनमें तनिक भी द्वेष या घृणा की गंध आती हो, इनमें लिप्त होने से आप स्वयं उन विचारों को अपने पास बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाई की आंखों में किरकिरी ढूंढने जा रहे हो, समझ लीजिए कि आप अपनी ही आंखों में तिनका डाले ले रहे हैं। पाप से घृणा और पापी से प्रेम करने में आपको कठिनाई इस कारण होती है कि पाप के अर्थ को आप ठीक तरह से नहीं समझते हैं। जिस प्रकार लोग जब अपने शरीर और धन को बहुत मानने लगते हैं तो ईश्वर को भी साकार मानने लग जाते हैं। जिस प्रकार लोग मूर्ति और प्रतिमाओं का निर्माण करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी विशेष कार्य को बढ़ा चढ़ा कर देखना, पूजा करना लोगों की अज्ञान प्रवृत्तियों का फल है और इस प्रकार से वे किसी कार्य को छोटा कहने लगते हैं और किसी को बड़ा। स्मरण रखिए कि धर्म हृदय की वस्तु है, गुण भी हृदय की वस्तु है और दोष भी। पाप और पुण्य दोनों का संबंध आपकी स्थिति तथा मानसिक अवस्था के साथ है। यदि आपने कोई महान और उदार कार्य किया हो और आपके साथियों ने वो कार्य नहीं किया है और यदि आप इस महान कार्य करने के गर्व से फूलकर कुप्पा बन जाते हैं और अपने साथियों की निंदा तथा आलोचना करते हैं तो क्या इससे आपके उस सद्गुण में कुछ बढ़ोतरी होती है? क्या आप ऐसे आचरण के द्वारा ईश्वर के अधिक निकट पहुंच जाते हैं? नहीं, आपने एक प्रकार की बुराई के बदले दूसरे प्रकार की बुराई को मूल ले लिया है। आपके त्यागे हुए बुरे कर्म उन तांबे के पैसों के समान हैं, जिन्हें आपने चांदी के रुपयों से बदल लिया है। ये चांदी के रुपए निंदा या आलोचना है, दूसरों में दोष निकालने का स्वभाव है। इससे आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा, आप में एक बुराई रह गई है। शुरू में शायद आप में 100 बुराइयां थी, किंतु अब भले ही आप में केवल एक ही बुराई है, किंतु ये एक बुराई दूसरी 100 बुराइयों के बराबर है। इसलिए ये आलोचना की मनोवृत्ति आपको सच्चे त्याग के जरा भी निकट नहीं लाती। समालोचना और बुरे विचार आपको किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? अगर आप उन्हें ग्रहण करते हैं तो वे आपको हानि पहुंचाते हैं, यदि आप उन्हें ग्रहण नहीं करते तो वे आपको हानि नहीं पहुंचाते। ठीक जिस प्रकार एक व्यक्ति आपको पत्र भेजता है और आप उसे पाते हैं, आपके ऊपर उस पत्र का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, किंतु यदि आप उस पत्र को स्वीकार ही न करें, उस पत्र को खोले ही नहीं, उसे डाकखाने में वापस छोड़ाएं, तो भेजने वाले को वो पत्र वापस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि और लोग बुरे विचार भेजते हैं और आप उनको ग्रहण नहीं करते तो वे बुरे विचार लौट जाते हैं।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे स्वामी रामतीर्थ के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

गौरीपुत्र मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी न सिर्फ सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, बल्कि वो हमारे जीवन के सभी कष्टों और बाधाओं को भी हर लेते हैं। उनका हर एक रूप हमें बुद्धि, ज्ञान और धैर्य की सीख देता है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर गजानन का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बना रहे।

गणेश जी की वंदना के बाद आइए हम सब मिलकर उनका ध्यान करें जो इस सृष्टि के कण कण में बसे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। श्री राम का नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा आदर्श है। वो एक आदर्श बेटे, एक आदर्श भाई और एक परोपकारी राजा हैं जिन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का रास्ता दिखाया। उनका शांत स्वभाव और धैर्य हमें हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब अपने हृदय में श्री राम के विश्वास और प्रेम को जगाएं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं।

आइए अब हम सब मिलकर उनका ध्यान करें जो इस पूरी सृष्टि के कणकण में बसे हैं, देवों के देव महादेव, भगवान शिव, भोलेनाथ। जितने भोले हैं उनका स्वरूप उतना ही विराट और शक्तिशाली है। वो वैरागी भी हैं और इस संसार के पालनकर्ता भी हैं। उनका ध्यान हमारे मन को शांति देता है और हर डर को दूर कर देता है। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं।

प्रार्थना वो पवित्र डोरी है जो हमारी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हम उस परमात्मा की असीम ऊर्जा और शांति को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। ईश्वर तो हर जगह है, वो हमारी हर पुकार सुनते हैं और मुसीबत में हमारा सहारा बनते हैं। आज के इस पवित्र माहौल में आइए हम सब मिलकर उस भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें।

आइए अब हम सब मिलकर माता पार्वती के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। माँ पार्वती प्रेम, करुणा और त्याग की मूर्ति हैं, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से शिव जी को पाया। वो जितनी शांत और ममतामयी हैं, सृष्टि की रक्षा के लिए उतनी ही शक्तिशाली भी हैं। माँ पार्वती का आशीर्वाद हर घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य लाता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में माँ पार्वती का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनकी ममता की छाया हम पर यूं ही हमेशा बनी रहे।

कार्यक्रम आराधना में आज आपने सुने उदित नारायण, शर्मा बंधु, अनूप जलोटा, सोनू निगम, श्रुति शेडुलकर और साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूं सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 1 जुलाई। आइए डालते हैं एक नज़र आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था और इसी तारीख को साल 1962 में इनका देहांत भी हुआ था। वो चिकित्सा जगत के ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने न केवल असाधारण रूप में मरीजों की सेवा की बल्कि आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और सामाजिक ढांचे को भी मजबूत किया। ये दिन समाज में डॉक्टरों की अमूल्य योगदान, उनकी निस्वार्थ सेवा और

चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी 24 घंटों की प्रतिबद्धता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक खास अवसर है। 1 जुलाई 2017 की आधी रात को भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष से देश के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार लागू किया गया, जिसे वस्तु एवं सेवा कर GST कहा जाता है। इसने आज़ादी के बाद से चली आ रही जटिल और बहुस्तरीय प्रत्यक्ष कर प्रणाली जैसे वैट सर्विस टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के उद्देश्य से शुरू की गई इस व्यवस्था ने पूरे देश को एकल बाजार में बदल दिया। हर साल 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और व्यापार करने की सुगमता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना की थी। ब्रिटिश काल के तीन बड़े बैंकों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था, जिसे आज़ादी के बाद देश के आम नागरिकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सरकारी संस्था में बदल दिया गया। SBI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था, ताकि देश का हर वर्ग आर्थिक विकास से जुड़ सके। न्यायपालिका के इतिहास में 1 जुलाई 1862 का दिन बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। ये भारत का सबसे पुराना और एशिया के शुरुआती आधुनिक न्यायालयों में से एक है। इसके भव्य इमारत बेल्जियम के क्लॉथ हॉल की वास्तुकला से प्रेरित होकर बनाई गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय कानूनी प्रणाली के विकास, ऐतिहासिक फैसलों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आज भी पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के संगठन नाटो को टक्कर देने के लिए सोवियत संघ ने 1955 में पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों के साथ मिलकर वारसा संधि नाम का एक सैन्य गठबंधन बनाया था, लेकिन सोवियत संघ के आंतरिक संकट और कम्युनिस्ट विचारधारा के कमजोर होने के बाद 1 जुलाई 1991 को चेकोस्लोवाकिया में इस संधि को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया। वारसा पैक्ट का समाप्त होना इस बात का सीधा संकेत था कि शीत युद्ध अब खत्म हो चुका है और दुनिया में अमेरिकी महाशक्ति का प्रभुत्व बढ़ने वाला है। 1 जुलाई 1979 को जापानी कंपनी सोनी ने दुनिया का पहला पोर्टेबल ऑडियो कैसेट प्लेयर वॉकमैन TPS-L2 बाजार में उतारा, जिसने संगीत उद्योग और मानव संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पहले लोग केवल घरों में भारी भरकम टेप रिकॉर्डर का या रेडियो पर ही गाना सुन सकते थे। वॉकमैन ने संगीत को व्यक्तिगत और गतिशील बना दिया, जिससे लोग चलते फिरते, जॉगिंग करते या यात्रा के दौरान हेडफोन लगाकर अपनी पसंद के गीत सुन सकते थे। इस गैजेट की दीवानगी इस कदर बड़ी कि ये युवाओं के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया और आज के आधुनिक आईपॉड और स्मार्टफोन पर म्यूजिक स्ट्रीमिंग की नींव रखी। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय बांसुरी वादक व संगीत निर्देशक हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 1938 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता एक पहलवान थे और उन्हें भी पहलवान बनाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने पिता से छिपकर 15 वर्ष की आयु में पंडित राजाराम से गायन और बाद में वाराणसी के पंडित भोलानाथ से बांसुरी बजाना सीखा। संगीत की अपनी कला को निखारने के लिए इन्होंने मैहर घराने की बाबा अलाउद्दीन खां की बेटी अन्नपूर्णा देवी से शिक्षा दीक्षा ली, जिसने उनके वादन शैली को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और बाद में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर शिवहरि नाम से बॉलीवुड की सिलसिला चांदनी और डर जैसी कई कालजयी फिल्मों में

सुपरहिट संगीत दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और लोकवाद्य बांसुरी को शास्त्रीय मंचों पर मुख्यधारा में लाने के उनके महान योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा। वर्तमान में वे मुंबई और भुवनेश्वर में अपने वृंदावन गुरुकुल के माध्यम से नई पीढ़ी को पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के तहत संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा में हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे समाज के उन नायकों को समर्पित हैं जिन्हें हम धरती पर भगवान का रूप मानते हैं। डॉक्टर ना केवल बीमारियों का इलाज करते हैं बल्कि अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर मरीजों को नया जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये विशेष दिवस स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इन पेशेवरों के निस्वार्थ सेवा, त्याग और अथक प्रयासों के प्रति पूरे देश की ओर से गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है। दर्द को जो समझे वो इंसान होता है, जो मिटा दे दर्द को तो वो भगवान होता है। सफ़ेद कोट में छुपा है मानवता का वो रूप जो हर मर्ज की दवा, हर मर्ज का निदान होता है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य बेहद खास और ऐतिहासिक है। ये दिन भारत के महान चिकित्सक, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और संयोगवश 1 जुलाई 1962 को ही इनका देहांत हुआ। चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1991 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। डॉक्टर रॉय को उनके महान कार्यों के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। डॉक्टर बीसी रॉय ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिन तैयारी और संघर्ष किया। पटना से गणित में स्नातक करने के बाद इन्होंने एक साथ बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज दोनों की प्रवेश परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने मानव सेवा के लिए चिकित्सा को चुना। अपनी मेडिकल पढ़ाई के दौरान वे इतने गरीब थे कि किताबों और रहने का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाते। उनका असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां के सेंट बार्थोलोमियो अस्पताल ने उन्हें एक भारतीय होने के कारण दाखिला देने से साफ मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर रॉय ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 29 बार आवेदन किया और इस अटूट जिद और लगन के आगे ब्रिटिश प्रशासन को झुकना पड़ा और 30वीं बार में उन्होंने दाखिला लिया। उन्होंने मात्र 2.25 साल के रिकॉर्ड समय में लंदन से दुनिया की दो प्रतिष्ठित डिग्रियां MRCP और FRCS एक साथ हासिल करके इतिहास बना दिया। उनका ये संघर्ष हमें सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर इरादे पक्के हों तो मंजिल पाई जा सकती है। श्रोताओं, हमारे समाज में डॉक्टरों की भूमिका केवल दवाइयां लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि वे समाज के स्वास्थ्य और खुशहाली की रीढ़ की हड्डी हैं। इस साल इस दिन को एक विशेष विचार के साथ मनाया जा रहा है और इस वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, मास्क के पीछे डॉक्टरों का इलाज कौन करता है, रखी गई है। ये थीम बहुत गहरी है क्योंकि ये दूसरों को ठीक करने वाले डॉक्टरों की अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत पर ध्यान केंद्रित करती है। आज के दौर में डॉक्टरों और मरीजों के बीच का संबंध और आपसी विश्वास बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हमें डॉक्टरों के प्रति सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल तैयार करना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर या तनाव के मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तर

0: नीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीयवर्षे 25-100 दिनानां सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीणभारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतनतन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीयवर्षस्य कृते 92.6 शताधिक 95 सहस्रकोटिरूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीणश्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्रीचौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः च साकं दृढसमन्वयं विधाय अस्याः नूतनव्यवस्थायाः निर्बाधसञ्चालनाय सर्वाः प्रशासकीयवित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-100 दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिकसम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसितभारतस्य सङ्कल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीयभारतयात्राप्रसङ्गे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह 16 भारत-जापान वार्षिकशिखरसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखरसम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीयसहयोगस्य समग्रक्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्डराज्यस्य मदरसाशिक्षाप्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतनव्यवस्थायाः अन्तर्गतम् उत्तराखण्डमदरसाशिक्षापरिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसङ्ख्यकशैक्षणिकसंस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्यप्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसङ्ख्यकशैक्षणिकसंस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्डराज्य अल्पसङ्ख्यकशिक्षाप्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी चुनौतियां और अवसर। दिन में

गति स्पिनर पर आप सभी सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 2:30 पर होंगी खेती की बातें, जिसमें आज आप सुनेंगे धान की फसल का हानिकारक कीटों से बचाव विषय पर जेपी गुप्ता की पूर्व प्रसारित वार्ता। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर, जिसमें आज की बात के विषय रहेंगे जीएसटी दिवस, चिकित्सक दिवस और हरी भरी रहे वसुंधरा। इसी कार्यक्रम में साइंस का संसार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा आज का विषय रहेगा एक्सपोसेट मिशन उत्तरायण। इस कार्यक्रम में होती है आपसे मुलाकात शाम 5:45 पर। चर्चाएँ होंगी वन महोत्सव सप्ताह और पुरुषोत्तम दास टंडन पुण्यतिथि विषयों पर। शाम 7:00 होती है आपसे मुलाकात कार्यक्रम ग्राम जगत में। इस कार्यक्रम में आज की बातों के विषय रहेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित धान की खेती, धान की रोपाई व देखभाल और फसल कीट निस्तारण। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे लोक गाथा भनारी नैंद का अंतिम भाग। कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में शाम 6:41 पर। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। लोक गीतों के कार्यक्रमों में लोक मंजरी आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर। लोक सुर सुबह 11:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत दिन में 2:00 और शैल स्वर शाम 5:05 पर। गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में सब रंग सुनिएगा सुबह 10:05 पर और सुगम संगीत दिन में 1:15 पर और रात्रि 10:00। श्रोताओं फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। सुबह 10:35 पर सुरबहार। पूर्वाहन 11:00 सैनिकों के लिए। दोपहर 12:00 मेरी पसंद। 2:45 पर एक ही फनकार। अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्में गीत। शाम 7:40 और रात्रि 10:30 फिल्म संगीत और रात्रि 9:30 इंद्रधनुष। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह आज से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के 3 परिसरों में 244 नए पद सृजित। राज्य में कल 66 स्थानों पर होगी आपदा प्रबंधन की व्यापक मॉक ड्रिल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित और निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। और प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के स्थान पर आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मदरसे अब राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की निगरानी में भी रहेंगे। और अधिक जानकारी हमारी राज्य संवाददाता से।
1: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षा

0: संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है, तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को यूडायस यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। इस माध्यम से प्रत्येक मदरसे का शैक्षिक और प्रशासनिक विवरण शिक्षा मंत्रालय के डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले संस्थानों को ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्राधिकरण ने सभी शिक्षक संस्थानों के लिए मान्यता प्राप्त करना भी अनिवार्य किया है। पहली से आठवीं कक्षा तक संचालित 400 मदरसों को जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा नौवीं से बारहवीं तक चालित 56 मदरसों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाएगी। अब तक 137 मदरसों ने प्राधिकरण के पोर्टल पर मान्यता के लिए आवेदन किया है। सरकार का कहना है कि इन संस्थानों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर मुख्य धारा में शामिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ स्थित परिसरों में शैक्षणिक और शिक्षणेतर संवर्ग के 244 नए पद सृजित किए गए हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इन पदों के सृजन से तीनों परिसरों को पहली बार स्थायी शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचा मिलेगा। इससे शिक्षण, शोध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने के साथ ही छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन पदों पर आउटसोर्स व्यवस्था लागू होगी उन पर राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुरूप अधिकृत एजेंसी के माध्यम से जल्द कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन पदों के सृजन से तीनों परिसरों में शिक्षण कार्य, शोध गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित और निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में श्री जोशी ने क्यारा धनौल्टी मार्ग, गढ़बुरास खंडा मार्ग तथा मोटीधार मसराना लोहारीगढ़ मार्ग सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनसून के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं में ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं उनके अनुबंध समाप्त कर नियमानुसार अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
3: बिल्डिंग की सड़कों को लेकर एक आवश्यक बैठक मैंने की जिसमें सड़कों की प्रगति के बारे में जानकारी ली, क्योंकि बरसात आने वाली है और मैंने कहा समय से पहले उन सड़कों के काम पूरे हों। अगर कहीं पे ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसका बॉन्ड फाइनल करके किसी अन्य व्यक्ति से काम कराया जाए, लेकिन इनकी वजह से क्षेत्रीय जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे अधिकारी ने बताया कि शीघ्र ही इन सड़कों का काम पूरा होगा और क्यारा धनौल्टी मांग जो कि बहुत लंबी मांग थी उसका शासनादेश हो गया है। 7 तारीख को उसका फॉरेस्ट अथॉरिटी के सारी ज्वाइंट सर्वे होगा।
2: राज्य में मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कल सभी 13 जिलों के 66 स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंतिम चरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस दौरान सभी जिलों और विभिन्न रेखीय विभागों की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली, आपसी समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता तथा राहत एवं बचाव कार्यों की कार्य योजना का परीक्षण किया गया। गोताखोरों, जल पुलिस, जेसीबी, नौकाओं, राफ्ट तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता और संचालन की भी समीक्षा की गई। साथ ही राहत शिविरों में बचाए गए लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी, त्वरित तथा समन्वित बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित की जा रही इस व्यापक मॉक ड्रिल में अधिकांश स्थान पहली बार शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं

0: भी मॉकड्रिल का निरीक्षण करेंगे।
1: मौसम विभाग ने आज देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर बागेश्वर जिले में आज सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। गढ़वाल मंडल में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से राज्य में मॉनसून की सक्रिय होने की संभावना है। उन्होंने लोगों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी है। डॉक्टर तोमर ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से स्थानीय मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यात्रा करने की अपील की है।
2: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश आने के स्थान अधिकांश स्थानों पर से अगले 5 तारीख तक हमारे को देखने को मिल सकती है। चार धाम जैसी यात्रा है, जैसे हम सबसे पहले तो हिदायत यही रहती है कि आप ऐसी सिचुएशन में ना निकलें, यात्रा ना करें। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी उस क्षेत्र में हैं, आपको वापस आना है या आपको फर्दर जाना है जो भी है, तो उसमें जो भी हमारे बुलेटिन में जो मैसेजेस होता है उसमें सजेशन दिए होते हैं कि भाई आपको कैसे उससे इन चीजों से अगर अवॉइड करना है तो क्या करना है। तो जैसे कि हम तय है कि आपको उस क्षेत्र में जाने से पहली चीज तो बचें, अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो पूरी जो है एहतियात बरतें।
1: कुमाऊं स्थित 130 इन्फेंट्री बटालियन ने कल पिथौरागढ़ जिले के भूस्खलन प्रभावित देवल गांव में 10,000 पौधों का वृक्षारोपण किया। इस अभियान में वन विभाग, पूर्व सैनिकों, स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक रिपोर्ट।
3: 130 इन्फेंट्री बटालियन पिछले 3 दशकों से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। बटालियन अब तक 2,54,00,000 से अधिक पौधों का रोपण और संरक्षण कर चुकी है, जिससे लगभग 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित आवरण विकसित हुआ है। पौधों की जीवित रहने की दर 75% से अधिक रही है। इन प्रयासों से वनावरण में वृद्धि, मृदा संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिला है। बटालियन के अनुसार यह वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आपदा जोखिम को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे भविष्य में देवल क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, हरित और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से तेजपाल सिंह।
1: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड पहुंचा मॉनसून, अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में भारी से बेहद भारी वर्षा होने की जारी की चेतावनी। सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ दिल्ली में बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्र से 7,000 करोड़ की सड़कों पर सहमति। उत्तराखंड के मदरसों पर केंद्र की भी निगरानी, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है राज्य में मदरसा बोर्ड के स्थान पर आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सचिवों के साथ 4 घंटे की मैराथन बैठक में नवोदय टाइम्स की सुर्खी है, जन केंद्रित पहलों में हो न हो देरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह आज से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के 3 परिसरों में 244 नए पद सृजित। राज्य में कल 66 स्थानों पर होगी आपदा प्रबंधन की व्यापक मॉक ड्रिल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित और निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। और प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गिरीश सिंह बरगली के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हमारे आज के कलाकार हैं गिरीश।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। और आइए अब इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गिरीश सिंह बरगिल की गाई ये छपेली।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमाऊँ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने गिरीश सिंह बरकिली के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये

0: का प्रावधान किया गया है।
1: वी बी जी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त

0: उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जोग। आपके साथ तबले पर संगत की थी साबिर खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान के

0: प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोल में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को अब समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान एक नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थीं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। ताजा समाचार मिलने तक मेक्सिको 2-0 से आगे है और राउंड 32 में मेक्सिको तथा इक्वाडोर के बीच मुकाबला चल रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत निर्झर। स्वागत हैं हम आप सभी के फरमाइशी नगमों और ख़तों के साथ। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को सौम्या कांडपाल का प्यार भरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम के आरंभ में आपने अभी सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और पसंद किया था। चंडीगढ़ से सुधीर नूतन, संदीप उगलानी, जगमोहन प्रजापति, जग्गी दुआ, रेणु नेगी, शिल्पा नायर, ईशाप्रीत शर्मा, पंकज और रोहित शर्मा ने। मोहाली पंजाब से थे बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। डाबकी डोडा कोला से हमारे श्रोता थे सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव और निशा रानी मंदूरकर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से थे मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शवन्या और उमेंद गोस्वामी। शादुल शहर राजस्थान से थे राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला और इनके परिवारजन। नेहरू चौक पैठण से हमारे श्रोता थे सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद सोनल, बेबी सिया जाधव, आरती और इनके ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुना चाहा था सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा, कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर ने। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से थे राधा नामदेव, अभिषेक और अपर्णा नामदेव। और उत्तर प्रदेश हरदोई लखनऊ से हमारे श्रोता थे मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजिस शेख, दानिश और अमन आफरीदी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर।

0: मत कीजिए, RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं आ गले लग जा फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, साहिर ने ये गीत लिखा है और RD बर्मन ने संगीत दिया है। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। हरियाणा अम्बाला से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवारजन इसी गीत को सुनना चाहा है। भटिंडा आदर्श नगर परमवीर हाउस से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर ने। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। पोटियाला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा इस गीत को सुनना चाहा है। नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, वसीम, महतीन, मुबारक खान, नैमुद्दीन, मोहम्मद यासीन, शेख चंद, शेख सलीम और इनके परिवारजन इसी गीत के इंतज़ार में। हरियाणा झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश सोनाली और इनके परिवारजन। मोटका माफिया जिला खंडवा से महशोता, जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवकिशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल और बागपत यूपी से इस गीत को सुनना चाहा है। आसिफ अली खान, मोमी नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली और सारिक अली खाने।

कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहार, निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल राय, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सैफुद्दीन कुमार वली, वसीम आसमा, अकरम आसमा, रेशमा थापा, सोनिया थापा, सोनम थापा और अदीबा थापा, लक्ष्मीबाई वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, ललिता, गणेश करते, संजना परिखर्चे, मालती स्वाति प्रयाग और प्रियांशु खर्चे, बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पगारिया, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग, गणेश, कार्तिक, परी और संजना, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत क्वाड़कर, राही सरिता, सिद्धांत प्रिंस, एकांश क्वाड़कर, सिद्धांत प्रणीता क्वाड़कर, अर्जुन वैशाली, शैलेश क्वाड़कर, सुमित ध्वनि और परी क्वाड़कर, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवीन, पप्पी भाटिया और इनके ढेर सारे साथी, सेक्टर 47 मोहाली, चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रदीप, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, इंदौर से देविका चौधरी, कविता, संजय, मनीष, मनीषा और इनके परिवारजन, डोंडी लोहारा बालोद बागपत छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, प्रियंका तामुरिया, बेबी पूजा और प्रभा देवी तामुरिया, और ज़िला जालना से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षी साई, संचित वयार, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सानवी देशमुख। तो आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, जसपाल सिंह की आवाज़ में। इस गीत को पसंद किया है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सुरेश, सोनू राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार दौदी, प्रमोद कुमार और सौरभ दौदी। कुरावली जैन मंदिर से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नौरीन, नसरीन अंसारी, आसमा आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। सतना एमपी से हमारे श्रोता हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और शुभांशु मलिक। इसी गीत को सुनना चाहा है मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि, नीना जी और स्वप्निल धाड़े ने। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं बेबी शालिया डावर, हलीमा जकीरा, आयशा खत्री ने। धर्मपुरी जिला धार से हैं ईशा खत्री, जकीरा खत्री और मोहम्मद सात खत्री। ज़िला बिजनौर शेरकोट से हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, करण, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता।

जिला उज्जैन बोर्ड खेड़ा पित्रामल से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत और इनके परिवारजन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला विजय शुभम, पवन जरिए संजीव डोबेराय, मालुट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, अनमोल और विवान मिगलानी, गुन्नौर उत्तर प्रदेश से हरवेश कश्यप, अरजीत और दिव्यांश कश्यप, सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला दीपक अनुश्री और आसमा श्याम कुंवर, नरहन इस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन अमन बेबी और इनके परिवारजन, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया और सखी सहेली ग्रुप बीड शहर से ये सभी सखियां हैं, जयश्री महतरे, कविता टाउल, पुष्पा अग्रवाल, कमल मंजुश्री और मीरा। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं हेट स्टोरी 2 फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह और समीरा कोपिकर की आवाज़ों में आरको ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है मिथुन ने।

पापा कहते हैं। आइए आपको इस फिल्म का गीत सुनाते हैं उदित नारायण की आवाज़ों में, की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इस गीत को संगीत दिया है और पसंद किया है। ज़िला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूरत ने। ज़िला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला, गायत्री, विजयवेद, रानी, महिमा, नीतू और इनके ढेर सारे साथी। पथरिया से हैं नरेन, नेतराम, कुसुम, प्रोनिका और उत्कर्ष। इस गीत को सुनना चाह है भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनीजा और विमला अनीजा। सीतामंडी बिहार से हमारे श्रोता हैं अक्रम हुसैन, बेगम इर्शत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना, आरिस वसीम, नदीम वसीम, शमीम अक्रम, अमन अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और कलेर बिहार से हमारे श्रोता हैं हुमैर नाज, सुमैरा नाज, अभी

हम हैं राही प्यार के। आइए अब सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का गीत, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। समीर का ये गीत है, संगीत नदीम श्रवण का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। राजनाथ गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा जेल रोल रायगढ़ से हैं, रेशमा तिवारी, सोनम और अबीदा तिवारी। उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, पिंकी, रितेश कृष्णा, पीहू और इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनना चाहा है फुटानी चौक नरहन स्टेट से। उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बीबी आराध्या, गुंजन, अमित, सुमित और इनके ढेर सारे साथियों ने। दरियारपुर भाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप, बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, रौनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह। इस गीत को सुनना चाहा है सीतामंडी बिहार से तलत, जहानाज, फरहत, नूर जहां, साजिया और नाजिया नूर नाज ने। इसी गीत के इंतज़ार में सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। और ज़िला बिजनौर शेरकोट से हैं मोहम्मद वक़ार फरीद, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, रोज़ी परवीन, साजदा रानी, हिना कौसर और हमजा ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: आइए कार्यक्रम में आपको अब सुनवाते हैं मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म का ये गीत, रेखा भारद्वाज और शंकर महादेवन मोहित चौहान की आवाज़ों में गुलजार का गीत, संगीत विशाल भारद्वाज का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की हैं। बीट शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर खटे, संगीता साक्षी, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल, बिरजू परदेसी और इनके ढेर सारे साथी। रायपुर से हैं नीलू, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। अनारकली बाजार जगराव से दीपिका मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, विनोद और जयपाल यादव। इसी गीत को सुनना चाहा है जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर तस्नीम कौशल, इशिता साहनी, प्रियंका, डॉक्टर सोनम वली, नाजनी तबस्सुम और अफजल इब्राहिम ने। भाटापारा देवरी से हैं केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल और मुरली। इसी गीत के इंतज़ार में पटेल नगर मालूट पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जजोरिया। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, सुशांत और जयबीरू। इसी गीत को सुनना चाहा है कासगंज बिलास राम गेट से असलम सैफी, जयमनीषा बेगम, अकरम सैफी, सद्दाम सोनी और आवाद खान। और इसी गीत को सुनना चाहा है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान और जीशान वारसी ने।
1: है

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। अलका याग्निक, कुमार सानू, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में हिमेश रेशमिया ने इस गीत को लिखा है और पसंद किया है। धरती सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवानी इस गीत के इंतज़ार में हैं। भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून, ईशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद और इनके परिवारजन मालियान सजना मेरठ से हैं। अनिल जैन, संयम, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन, आदि जैन, अंश और भव्य जैन फ्रेंड्स कॉलोनी कलनार से हैं। गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं। रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश और इनके परिवारजन और जोधपुर राजस्थान से हैं। रमेश कुमार चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी। इस गीत को सुना चाहा है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा हनुमान और उत्तम कुमार बोटके ने। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं गणेश खर्चे, कार्तिक परी, खुशी वंदना, स्वाति प्रयाग और इनके ढेर सारे साथी। और पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अन्नव आनंद, सत्यमानंद, मुन्ना भगत और गुट्टी भगत।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, आप सभी के फरमाइशी नगमों और ख़तों के साथ। तब तक के लिए सौम्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत निर्झर FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर

0: चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक नेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉग इन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं पंकज उधास की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा, वीबीजी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हरिद्वार पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर नकली नोट तैयार करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले जाली नोट बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से मिली जानकारी, तकनीकी साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में छपे हुए जाली नोट, एक लैपटॉप प्रिंटर तथा नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
1: जो कोतवाली शामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी की गई तो पता चला कि 3 लोग, 2 बिजनौर के और एक शामपुर का रहने वाला है, इस तरह के फर्जी नोटों का प्रिंटिंग और ये करते हैं। गाड़ी से करीबन 52,000 के प्रिंटेड नोट्स मिले जो शीट्स में थे, जो अभी तक कटे नहीं थे। इसके साथ साथ एक लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स की भी बरामदगी हुई। इनके द्वारा नोट्स होते थे उनको बेसिकली हाई क्वालिटी से स्कैन करके उनको प्रिंट किया जा रहा था एक बहुत ही प्रॉपर पेपर पे, एक फर्जी करेंसी को एक एक्चुअल यूज में यूज कर पाए।
0: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने अवैध निर्माण और भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश में एक साथ 5 स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अभियान के तहत गंगानगर स्थित परशुराम चौक के पास बिना स्वीकृति मानचित्र के बनाए जा रहे एक बहुमंजिला भवन को सील किया गया। वहीं आमबाग स्थित गायत्री विला क्षेत्र और गली नंबर 2 में बिना अनुमति निर्मित किए जा रहे 2 अन्य बहुमंजिला भवनों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसके अलावा आमबाग क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर लगभग 5 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को JCB ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, भूखंडों के सीमांकन और अन्य विकास कार्यों को भी हटाया गया। MDDA का कहना है कि अवैध निर्माण, अनाधिकृत कॉलोनियों और भूमाफियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। राजधानी देहरादून स्थित प्रदेश के अन्य जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। उधर पिथौरागढ़ में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर बागेश्वर जिले में आज सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। गढ़वाल मंडल में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने लोगों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने तथा खराब मौसम के दौरान

0: सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में उत्तराखंड की लगभग 7000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। बैठक में हरिद्वार बाईपास और कोटद्वार बाईपास परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों को स्पर मार्गों से जोड़ने वाली लगभग 3000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं तथा अल्मोड़ा में सिकुड़ा बैंड से राष्ट्रीय राजमार्ग 309 तक सुरंग सहित मोटर मार्ग निर्माण के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

दोस्तों, आज सुबह जब मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का एक झोंका चेहरे को छूकर गुजरा और उसके ठीक बाद मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू आई जो हमें खींच कर सीधा हमारे गुजरे हुए कल में ले जाती है। हाँ दोस्तों, बादल घिराए हैं और बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश का मौसम ना एक पुराने दोस्त की तरह होता है। जब भी आता है ढेर सारी पुरानी बातें और यादें साथ लेकर आता है। हम चाहे ज़िंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितनी भी बड़े शहर में हम क्यों ना चले जाएं, पर जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो दिल हमेशा अपनी पुरानी गलियों में ही लौट जाता है। तो आइए आज ज़िंदगी की इस भागदौड़ को थोड़ा सा रोकते हैं, छाते को थोड़ा सा अलग रखते हैं और बैठते हैं यादों के उस झरोके के पास जहां हमारा बचपन हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो आइए सुरबहार कार्यक्रम में शीर्षक गीत के अंतर्गत आज सुनते हैं बारिश शीर्षक पर आधारित कुछ फिल्मी नगमे में।

दोस्तों, जब हम छोटे थे तो बारिश का मतलब कुछ और ही हुआ करता था। याद है आपको, जब आसमान में काले बादल आते ही हम खुशी से झूम उठते थे कि शायद आज स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। वो दोस्तों के साथ स्कूल से लौटते वक्त जानबूझकर छाते को बंद कर देना ताकि पूरी तरह हम भीग सकें। गलियों के उस बहते हुए पानी में अपनी नोटबुक के पन्नों से बनी कागज़ की कश्ती को तैराना, और वो जब कश्ती थोड़ा दूर जाकर डूब जाती तो एक अलग ही मुस्कान चेहरे पर होती थी। आज हमारे पास महंगे से महंगे छाते हैं, रेनकोट हैं, पर वो बारिश में खुलकर भीगने वाली आज़ादी कहीं खो सी गई है। हम बड़े क्या हुए, लगता है बारिश का मज़ा ही भूल गए। आज इस मौसम को खुद से दूर मत कीजिए, अपने अंदर के उस बचपन को बाहर आने दीजिए और बारिश का मजा लीजिए।

दोस्तों, बारिश सिर्फ शरारत या बचपन नहीं है, ये मौसम उन दिलों के लिए भी है जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। याद है जब

हम खिड़की के शीशे पर जमी उस बारिश की भाप पर उंगली से किसी का नाम लिखा करते थे, या फिर वो दिन जब बारिश की बूंदों को शीशे पर आपस में टकराते हुए नीचे गिरते हुए घंटों देखा करते थे, जैसे उन बूंदों में हमारी कोई पुरानी अधूरी कहानी चल रही हो। कहते हैं ना, जब दिल खुश हो तो हम गाने की धुन गुनगुनाते हैं, पर जब दिल उदास हो या टूटा हो या अकेला हो तो हम उन गानों के शब्दों को जीने लगते हैं। ये मौसम उन सभी के लिए एक मरहम जैसा है जो जिंदगी की धूप में थक चुके हैं। ये हमसे कहता है कि रुको, थोड़ा सांस लो और खुद को दोबारा ढूंढो। चलिए उन सभी जज्बातों को महसूस करते हैं इस अगले गीत के साथ।

दोस्तों, बारिश का जिक्र हो और उसमें प्यार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश और प्यार का कोई पुराना गहरा नाता है। याद कीजिए अपने कॉलेज के वो दिन जब अचानक बारिश शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही छाते के नीचे दो लोग चल रहे होते हैं। छाता छोटा होता है, पर उस छोटे से दायरे में जो पूरी दुनिया सिमट जाती है, वो एहसास कितना हसीन था। एक दूसरे के कंधे का थोड़ा सा भीग जाना, बिन कहे सब कुछ कह जाना और बस चाहना कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो, ये बारिश कभी रुके ही ना। बारिश दिल के दरवाजे खोल देती है। ये हमें किसी की याद में रोना भी सिखाती है और किसी के लौट आने की उम्मीद भी देती है। तो चलिए उन सभी दिलों के नाम जो इस वक्त किसी के प्यार में डूबे हैं या किसी हसीन मुलाकात को याद कर रहे हैं, सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, थोड़ा सा वक्त सिर्फ खुद के लिए निकालिए इस भागदौड़ वाली दुनिया से थोड़ा दूर। अपने फ़ोन को थोड़ी देर छुपा कर रखिए, खिड़की के पास बैठिए, एक गरम चाय की प्याली बनाइए, अपनों का हाथ थामिए और उनसे कोई पुराना किस्सा छेड़िए, क्योंकि ये मौसम दोबारा आए या ना आए, ये आज का खुशनुमा लम्हा दोबारा नहीं आएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

फौजी भाइयों, अभी आपने उपकार फिल्म का ये गीत सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत की आवाज़ में बादशाह फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का है।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं सरफरोश फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर ने इस गीत को लिखा है।

0: प्रतिभा योग कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं हिंदुस्तान की कसम फिल्म का ये गीत। सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, जसपिंदर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का ये लिखा गीत है और संगीत है सुखविंदर सिंह का।
1: Oh, yeah! Oh, yeah!

फौजी भाइयों, हिंदुस्तान की कसम फिल्म के इसी गीत के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सैनिकों के लिए जय हिंद।

सैनिकों के लिए। अभी हमारे फौजी भाई सुन रहे थे अपना ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर।

आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। इस कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है वीरेंद्र डंगवाल और नीता कुकरेती के युगल स्वरों में गढ़वाली लोकगीत।

बोजी फेरी जी माई वाच ये सोन भेजी दसवीं फेली बोजी भी ए पास अरे अंग्रेजी माँ बोदी बोजी फेरी जी माई वाच अरे

अरे काम धानी का बाना बोजी पेट पेड़ा बतांदी। अरे गांव खोला पंचायत मा बोजी अगवाड़ी चली जांदी। अरे काम धानी का बाना बोजी पेट पेड़ा बतांदी। अरे

श्रोता भी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

0: मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, सुरों के संगम से वो लोगों के दर्शकों के दिलों में जगह बनाना जानते हैं, तो दिग्गज सेलेब्स की मिमिक्री करना उनकी खासियत है। आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी फिल्मी दुनिया की शख्सियत से जिनकी आवाज और उनका बेहतरीन मिमिक्री करने का अंदाज एकदम जुदा है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक और मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले की, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और आज खास तौर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, 1 जुलाई आज उनका जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं सुदेश भोसले जी को उनके जन्मदिन की। और आज उनकी गायकी के कई अंदाज हम सुनेंगे कई खूबसूरत नगमों के साथ मेरी पसंद में।
1: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2

तो श्रोताओं, सुदेश भोसले की माता का नाम सुमनताई भोसले और एनआर भोसले उनके पिता का नाम है। सुमनताई भोसले भी एक मशहूर गायिका रहीं जिन्हें सुदेश को संगीत की शुरुआती तालीम देने का श्रेय जाता है। कॉलेज के दिनों से ही सुदेश भोसले को गायन और मिमिक्री का बड़ा ही शौक था। उनकी प्रतिभा को पहचान मिलने के बाद उन्हें जो है साल 1988 में फिल्म जलजला से पार्श्व गायन का पहला अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, और सबसे ज़्यादा जो उन्हें सफलता मिली वो मिली अमिताभ बच्चन के इस गाने से, हम फिल्म के इस गीत से। वो फिल्मी दुनिया में छा गए।

तो श्रोताओं, हम फिल्म के इस गाने के बाद तो सुदेश भोसले अमिताभ बच्चन की एक तरह से कहिए आवाज़ ही बन गए, और अमिताभ बच्चन की आवाज़ की हूबहू वो नकल कर सकते हैं। और

यही कारण रहा कि उन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के लिए कई गाने गाए जो कि बेहद लोकप्रिय भी रहे। और इन चर्चित गीतों में एक गीत तो आपने सुना, जुम्मा चुम्मा हो चाहे शावा शावा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, और सोना सोना, या फिर ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं बागवान फिल्म से। ये सभी गाने अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए, लेकिन आवाज़ उनकी बनी सुदेश भोसले की आवाज़ सनी।

अमिताभ बच्चन की आवाज बनकर जहां उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, तो वहीं वो अन्य कई कलाकारों की आवाज भी हूबहू निकाल सकते हैं। यानी वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, डबिंग कलाकार भी हैं और पार्श्व गायन तो करते ही हैं। और अभिनेता संजीव कुमार का जब असामयिक निधन हुआ तो उनकी एक फिल्म अधूरी रह गई थी। फिल्म का नाम था प्रोफेसर की पड़ोसन। इस फिल्म में उनकी निधन के बाद जो आवाज़ दी वो सुदेश भोसले ने ही दी थी। और इसके अलावा कई कलाकार हैं

जिनकी आवाज़ों के लिए उन्होंने पार्श्वगान किया, जैसे अमिताभ बच्चन तो हैं ही, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर और शाहरुख खान के लिए भी वो कई बार गा चुके हैं ग्रुप में, और गोविंदा या फिर कई अन्य कलाकार हैं जिनके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ का खूबसूरत अंदाज़ समय समय पर पेश किया है फिल्मी दुनिया में।

तो जाने माने पार्श्व गायक सुदेश भोसले रुपहले पर्दे पर तो आते रहे, उनकी आवाज़ के ज़रिए हो या फिर वो उन्होंने आवाज़ के साथ अपने ख़ास अंदाज़ से किसी डबिंग आर्टिस्ट के रूप में अपनी आवाज़ दी हो, इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी वो सक्रिय रहे। विभिन्न संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों में जो भी मनोरंजक कार्यक्रम पेश किए जाते थे उसमें वो निर्णायक, प्रस्तोता और कलाकार के रूप में खूब नजर आते रहे हैं। उनकी हास्य शैली, मिमिक्री और मंच संचालन ने उन्हें टेलीविज़न दर्शकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय बनाया है। भारतीय संगीत जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुदेश भोसले को साल 2008 में मदर टेरेसा मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है।

तो श्रोताओ, 3 दशक से ज़्यादा अपने लंबे फिल्मी करियर में सुदेश भोसले ने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है।

और सुदेश भोसले अपनी गायकी, मिमिक्री और जो वो सजीव प्रस्तुतियां देते हैं उसके माध्यम से दर्शकों का वो खूब मनोरंजन करते रहे हैं। और इसके अलावा जो फिल्में हैं, एक लंबी फहरिस्त है उनकी फिल्मों की। कुछ चर्चित फिल्में हैं हम, जिसमें उन्होंने जुम्मा चुम्मा दे दे ये गाना गाया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना रहा। साल 1993 में किंग अंकल फिल्म में अक्कड़ बक्कड़, बम्बे बॉ, क्रांतिवीर में लव रैप, जय अम्बे जगदम्बे, पीले पीले ओ मोरे राजा, तिरंगा फिल्म में साल 1993 में, और इसी साल दिल तेरा आशिक में, मुझे कुछ कहना है, राजू बन गया जेंटलमैन में, आज हमारी बस्ती में साल 1992 में, साल 2003 में बागवा में, मेरी मखणा मेरी सोनिए, कभी खुशी कभी गम 2001 में, से शावा शावा कोहराम फिल्म में साल 1999 में, हम हैं बनारस के, और लाल बादशाह में, धन्नो की आंखों में,

1992 में, साल 2003 में बागवा में, मेरी मखणा मेरी सोनिए, कभी खुशी कभी गम 2001 में, से शावा शावा कोहराम फिल्म में, साल 1999 में, हम हैं बनारस के, और लाल बादशाह में, धन्नों की आंखों में, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गाना अपने आप में इनका बेहद चर्चित गाना रहा।

गोलमाल 3 फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के लिए उन्हीं के चर्चित गाने को एक बार फिर से इस फिल्म में अपनी आवाज़ दी सुदेश भोसले ने।

तो श्रोताओं, सुदेश भोसले को अमिताभ बच्चन के अलावा अशोक कुमार की आवाज़ की वो भी बखूबी नकल करनी आती है। उन्होंने विनोद खन्ना, संजय दत्त, संजीव कुमार, अनिल कपूर, संजीव कुमार और मिथुन चक्रवर्ती इन सभी जाने माने कलाकारों के लिए मिमिक्री की है और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में भी अनेक गीत गाए हैं और आज वो बेहतरीन पार्श्व गायक तो है ही, साथ ही डबिंग आर्टिस्ट और मिमिक्री कलाकार के तौर पर भी एक बेहद सम्मानित स्थापित कलाकार हैं। और आज भी वो गायकी की बात हो या फिर मिमिक्री की बात हो या फिर कार्यक्रम प्रस्तोता की बात हो, जज के रूप में कई भूमिकाओं में वो नज़र आते हैं। तो आज एक बार पुनः उनके जन्मदिन की हम सुदेश भोसले जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो यूं ही सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे भी खूब दर्शकों को एंटरटेन करते रहें। आज मेरी पसंद फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का सफ़र अंजू पांगती के साथ यहीं तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में और आप सभी को आपकी रेडियो सखी सारिका शाह का नमस्कार। कैसी है बहनों? हम तो यही आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और बड़ी बेसब्री से हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रही होंगी। सच में बहनों, आधे घंटे के ये खूबसूरत सफर में आपका प्यार और साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे और इसी प्यार के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों, आज के आधुनिक समय में हम महिलाएं शिक्षा, रोजगार, राजनीति, विज्ञान और खेल जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। फिर भी बहनों, कभी कभी हमें कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तो बहनों, आज हम कार्यक्रम में चुनौतियों और अवसर विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहनों, जीवन में चुनौतियां और अवसर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां चुनौतियां हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है, वहीं अवसर हमें आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। बहनों, चुनौतियां हमारी क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उसका समाधान खोजता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। बहनों, हम जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पहले लड़कियों को कम अवसर मिलते थे, लेकिन आज के समय में काफ़ी बदलाव आ चुका है। आज अधिक से अधिक लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और अपने सपनों को साकार कर रही है। बहनों, जहां चुनौतियां होती है तो वहां अवसर भी मिलते रहते हैं। बहनों, हम महिलाएं परिवार और नौकरी के बीच संतुलन जैसी चुनौतियों का सामना करती है और फिर भी अपनी प्रतिभा और मेहनत से अपनी सफलता हासिल कर रही है। बहनों, डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने भी महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। वे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, घर से व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और डिजिटल माध्यम से अपनी आय को भी बढ़ा सकती हैं। हमारी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती का सामना करने में सहायता करते हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने वाला व्यक्ति नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम होता है। बहनों, कभी कभी असफलता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। वो हमारी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलते हैं। बहनों, आज के बदलते समय में नवाचार, तकनीकी विकास ने युवा वर्ग के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए निरंतर सीखना और स्वयं को समय के अनुसार ढालना बहुत जरूरी है। बहनों, ये सच है, चुनौतियां और अवसर जीवन के दो पहलू हैं। चुनौतियां हमें अनुभवी और आत्मनिर्भर बनाती है, जबकि अवसर प्रगति और सफलता का मार्गदर्शक होते हैं। बहनों, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है और जीवन के महत्व को समझा जा सकता है। बहनों, कार्यक्रम में गीत की तरह

बेनो, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ने रोजगार के नए अवसर दिए हैं। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अपने कार्य के द्वारा आय अर्जित कर रहे हैं। बहनों, ऑनलाइन रोजगार न केवल युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं और घर से काम करने के इच्छुक लोगों के लिए भी एक माध्यम बनकर उभरा है। तो बहनों, आज कार्यक्रम में सुनते हैं बिजनेस की नई शुरुआत का माध्यम सोशल मीडिया विषय पर श्रीमती प्रेमा धपोला, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की व्यवसायी हैं और जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस की शुरुआत की है। चलिए सुनते हैं उनसे ये क्षेत्र संकलित बातचीत।

0: स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।
0: आपने कुमाऊं की पारंपरिक ज्वेलरी कैसे जुड़ाव हुआ आपका, आप कैसे उससे जुड़ी रहीं?
1: मैम कुमाऊनी ज्वेलरी जो हमारे कुमाऊनी में पहना करते थे, पहले मैंने अपनी दादी और मम्मी को पहने हुए देखा था, तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो हमारे जो मैं माला बना रही हूँ वो मतलब उसका जो फैशन था खत्म होते जा रहा था, विलुप्त होते जा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको फिर से फैशन में लिया जाए, और उसके बाद मैंने शुरुआत करी। सबसे पहले तो मुझे सोशल मीडिया ऑनलाइन काम करने का आइडिया तो मैं सबसे पहले अपने दादा को देना चाहूंगी, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे जो है काम कर रही हो, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पर मैम, तभी मुझे सोशल मीडिया पर अधिकतर सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जो फिर दादा ने कहा आप क्यों ना ऑनलाइन काम कर सकती हो, तो इसलिए मेरे आइडिया आया कि मैं ऑनलाइन ये कुमाऊनी जो ज्वेलरी है उससे शुरुआत करूंगी।
0: लगाओ आपको बचपन से ही रहा?
1: जी मैम, बचपन से रहा, क्योंकि मैं पहले से देखती आई थी हमारे कुमाऊं में जितनी भी महिलाएं हैं हमारे नए नए मालाएं जैसे पहनती थी, तो इसी दिमाग में रहा कि इसको क्यों ना शुरुआत करें करके।
0: जैसे मैम आज के आधुनिक दौर में कुमाऊं की पारंपरिक ज्वेलरी को ऑनलाइन के द्वारा सेल करने का विचार, अभी जैसे आपने बताया कि आपके भाई साहब से आपको प्रेरणा मिली
1: जी,
0: तो और भी कुछ आपके मन में विचार आए कि मैं इसको सील करूं?
1: मेरे मन में ये विचार आया क्योंकि आजकल जो समय है ना लोगों के पास या महिलाओं के पास, किसी के पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, तो क्यों ना मैंने सोचा ऑनलाइन के द्वारा काम करें तो घर तक उन तक सामान पहुंचे और उनकी पसंद का पहुंचे, तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया और मैं इसमें लगी रहती हूँ काम करने के लिए, और डिलीवरी घर तक जाती है तो कस्टमर भी जो उनका रिप्लाई आता है मैम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आपने भेजा और टाइम पे मिल गया, तो इस तरह से उनका मतलब अच्छा रिप्लाई आता है, तो इसलिए मेरे लिए सबसे पहले मेरे कस्टमर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के द्वारा, अधिकतर मुझे फेसबुक के द्वारा ही ऑर्डर आते हैं, और जो अपने जुड़े हुए हैं तो जिनको पहचान के परिचित के लोग हैं उनको भी मैं

0: टू हैंड अपना सामान देती हूँ।
1: तो मैम आप जैसे आप इसको भेजती हैं ना ज्वेलरी को, तो आप कैसे बाय पोस्ट कर ऑनलाइन भेजती हैं?
0: जी मैम, जैसे ना मैं भेजती हूँ पोस्ट ऑफिस के द्वारा, अपने चार्ज पे भेजती हूँ। अगर कहते हैं कि कोई कस्टमर हमें जल्दी चाहिए तो उनके लिए कुरियर करा देती हूँ, तो ये दोनों सिस्टम रहता है। और जो परिचित होते हैं, अगर मिल जाते हैं, उनको हैंड टू हैंड पकड़ा देती हूँ।
1: मैम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते समय क्या आपको सोशल मीडिया को समझने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा?
0: मैम, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते समय सोशल मीडिया का सामना मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ा मैम। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्योंकि इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं जो हूँ 2 साल से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ मैम। पहले जो मैं पूरे शहर के बारे में बताती थी, अपने उत्तराखंड के बारे में बताती थी, तो लोग मुझे रिप्लाई करते थे, मैम आप जो है पूरे शहर के बारे में बता रहे हैं, अल्मोड़ा शहर हो गया, बाहर हो गया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी पुरानी यादों को ताजा करते। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत सारे मतलब दुकानों का प्रचार भी कराया, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। तो इस तरह से मेरा मतलब सोशल मीडिया से ही लगाव रहा है। 2 साल का जो मेरा सफर रहा, मैं रात के बैठ बैठ 2 बजे तक 1 बजे तक काम करती थी सोशल मीडिया में, तो इसलिए मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा सोशल मीडिया का। और मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा कि लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने काम की वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मुझे उनसे कोई सामना नहीं करना पड़ा सोशल मीडिया का। बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव कहें एक तरफ से, अच्छा रिस्पांस मिला, उनका बहुत साथ मिला है मुझे सोशल मीडिया वालों का।
1: मैम आज आपके ग्राहक किन किन जगहों से आपसे जुड़े हैं? क्या लोगों में कुमाऊं की पारंपरिक ज्वेलरी के प्रति रुचि बढ़ रही है?
0: मेरे ग्राहक तो आपको सबसे पहले जो मेरा ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर आया था, मैं इतनी खुश हुई थी उस समय, बल्कि अगर मेरी उन तक आवाज जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे पहला ऑर्डर आया था मेरा आगरा, आगरा के बाद फिर उसके बाद कर्नाटक का आया था, उसके बाद जम्मू का आया था, फिर दिल्ली का आया था, फिर पंजाब का भी आया था। मैम ये भी बताना चाहूंगी, पंजाब कहने में एक पंजाबी मैम, उन्होंने हमारे कुमाऊं की जो ज्वेलरी होती है ना मटर माला, उनको इतनी पसंद आई, कहने लगे मैम आपकी जो कल्चर में चलता है ना, जो माला चलती है, मुझे चाहिए मैम, आप जैसे भी हैं भेज दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे कुमाऊं के अलावा बाहर के लोग जो हैं, अदर कल्चर के लोग हैं या कास्ट के लोग हैं, वो भी इसको, इस कुमाऊं की जो मालाएं हैं वो भी उनको पसंद कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। उसके बाद हरियाणा का आया, मतलब बहुत मतलब जगह मेरा पार्सल चला गया है, और देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी, इतनी जगह अभी तक चला गया।
1: तो मैम ऐसे ही आपके काम के लिए आपकी प्रेरणा और बढ़ती रही।
0: जी मैम, अब मेरा मन करता है कि मैं और इसमें ध्यान दूं और काम को अच्छा करूं और लोगों तक मैं अपना काम का जो है पहुंचाऊं। और मैम आपको एक बात इसमें और भी शेयर करना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे लोगों का मतलब कॉल आया, कॉल ऐसे लोगों का कॉल आया कि मैम आप जो है हमारी शॉप है, दुकान है, तो आप हमें जो है ऑर्डर दे दीजिए करके। तो मैम सच बताएं, दिल से मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मुझे इतने पैसों का इतना ये लालच नहीं है कि मुझे ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं उनको, दुकानदार खास तौर पे दुकानदार ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं उनको दे दूं, पर नहीं, मेरे मुझे मेरा मन है कि मेरी जो बनाई हुई हाथ की माला है, जो मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ, पहले तैयार करती हूँ, ये डिजाइन कैसा लगेगा, ये फिट बैठेगा कि नहीं, ये सही लगेगा कि नहीं, पहले मैं खुद ही अपने मतलब एक सैंपल बनाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, ये डिजाइन बिल्कुल सही है और कस्टमर को जो है लोगों को पसंद आएगा, तो तब जाके मैं उसको फेसबुक में डालती हूँ। हाँ मैं बताना चाह रही थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया, हमें दुकान के लिए मालाएं चाहिए, पर मैंने उनको मना कर दिया। मना करने का रीजन ये था कि मेरे द्वारा जो बनाई गई है सिर्फ मेरे कस्टमर तक पहुंचे, यही मेरा एक मतलब उद्देश्य है इस काम को लेकर।
1: जी मैम, आपकी इस पहल पर आपके परिवार और समाज की क्या प्रतिक्रिया रही?
0: मैम सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले जो मायके से है, मेरे दादा, भाभी और छोटा भाई और मम्मी, उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट। आज जिस पोजीशन पे हूँ मैं, जहाँ पर हूँ, तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा, और मुझे बताने वाले तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। शायद उनका सपोर्ट नहीं रहता तो जिस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ तो शायद अभी इस हालात पे नहीं होती, तो उनको मैं
1: मैम जो महिलाएं नौकरी या घर की जिम्मेदारी

0: के साथ अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहती है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैम, जो महिलाएं जॉब करती हैं और साथ साथ में छोटा सा बिजनेस शुरुआत करना चाहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई इतनी है तो करना भी चाहिए, सभी महिलाओं को करना भी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि दोनों चीज एडजस्ट हो सकती है और जॉब के साथ साथ, और उनके लिए बहुत अच्छी बात है दोनों चीज करना। थोड़ा सा ये है कि टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा करना पड़ेगा।
0: प्रेमा जी, आपने जिस तरह अपने को बिजी रखकर कुमाऊं की पारंपरिक ज्वेलरी को नई पहचान देने का कार्य किया है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। आपकी मेहनत ये संदेश देती है कि महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपरा को सजोते हुए आत्मनिर्भरता का मिसाल बन सकती है। मैम, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहनों, अभी आप कार्यक्रम में सुन रही थी बिजनेस की नई शुरुआत का माध्यम सोशल मीडिया विषय पर श्रीमती प्रेमा धपोला से ये क्षेत्र संकलित बातचीत। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये संदेश।
2: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
3: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
2: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
3: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
2: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में, या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
3: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्वागत है बहनों फिर से आप सभी का। बहनों, मौसम में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। गर्मी की तपिश को मिटाने और धूल मिट्टी को धोने, छत पर बारिश की बूंदें दस्तक दे रही है। ये मौसम सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि ये नए आगाज का जश्न है। सच में ये मौसम का अंदाज ही कुछ अलग है, और इस मौसम में अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। तो बहनों, आज है बुधवार और आज हम रसोई से बदलते मौसम में गले का ख्याल विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहनों, मौसम तो बदल रहा है और जो हमारे किचन में सामान है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मौसम बदलने पर गले में खराश या कफ हो जाना बहनों आम बात है, तो आप ऐसे में अदरक तुलसी और शहद की चाय, और हो सके तो आप इसका काढ़ा बना कर भी ले सकती है, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, जो आपके गले की सूजन को कम करता है। बहनों, इसी तरह से आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिए, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारे शरीर को अंदर से ताकत भी मिलती है। आप लौंग और काली मिर्च को पीसकर इसकी चाय और काढ़ा बनाकर इसे पी सकती हैं। बहनों, ये मसाला ठंड और मौसम बदलने पर होने वाले फ्लू के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है। बहनों, इस मौसम में शहद भी एक महत्वपूर्ण होता है। गले में खराश और छोटे छोटे सीजनल एलर्जीज को दूर करने में शहद एक औषधि की तरह काम करता है। बहनों, मौसम चाहे सर्दी का हो या बरसात का, रसोई में नमी आने से सामान जल्दी खराब भी हो जाता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें और इसे सही तरह रखने से आप इसे नमी से भी बचा सकती हैं। बहनों, आप मसाले, नमक, चीनी और चाय पत्ती को हमेशा एयरटाइट बॉक्स में ही रखें। बहनों, इस तरह आप किचन के इस सामान को अच्छे से रख कर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में इस गीत का आनंद भी जरूर लें।

बहनों, धीरे धीरे कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहनों, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी रेडियो सखी सारिका शाह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

रहे हैं। दिन के एक बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और उसके बाद 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे

पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृह मंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्रभावी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नई व्यवस्था सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान और पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करेगी। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास की गई 40 गतिमान परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। और विद्यालयी शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। विनोद प्रसाद सिमल्टी बने माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम व गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत राज्य के लगभग 452 पंजीकृत मदरसों समेत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अधिनियम के अनुरूप मान्यता लेनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार आधुनिक, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, जवाबदेह और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान व पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और भारतीय जीवन मूल्यों से सशक्त बनाना है, ताकि वे विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
0: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी करने, राहत व बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने नागरिकों से मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष से तत्काल संपर्क करने की अपील की है। उधर चमोली जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी और मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा

0: रही है।
1: चमोली जनपद आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष भी हम आपदा की स्थिति को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। मॉक ड्रिल का लगातार आयोजन किया गया है। 2 जुलाई को भी एक मॉक ड्रिल प्रस्तावित है जिसमें क्लाउड बर्स्ट और मल्टीपल इवेंट्स का अभ्यास किया जाएगा। हमारे सभी विभाग, चाहे वो मलबा हटाने के लिए हो या रोड ओपनिंग डिपार्टमेंट हो अथवा रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, सभी को अपनी मशीनरी और मैन पावर की तैनाती के निर्देश दिए जा चुके हैं और इसकी भी समय समय पर भी समीक्षा की जा रही है।
0: लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून स्थित नंदा की चौकी पुल के पुनर्निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुल का 95% कार्य पूरा हो चुका है और इसे 10 दिनों के भीतर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। श्री महाराज ने बताया कि नदी के दोनों ओर RCC दीवार भी बनाई जा रही है, साथ ही पुल के अन्य 3 पिलरों का भी सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास की गई 40 गतिमान परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित सचिवों से कहा कि परियोजनाओं के अद्यतन विवरण में कार्य पूरा होने की संभावित तिथि का भी उल्लेख किया जाए तथा वर्ष के अंत तक पूरी होने वाली परियोजनाओं की मॉनसून के दौरान लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को महासू देवता हनोल में समग्र आधारभूत ढांचे के विकास और जागेश्वर धाम से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी विकास विभाग को देहरादून की जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली के विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, बनबसा सबस्टेशन, पीपलकोटी स्विचिंग सबस्टेशन और घनसाली सबस्टेशन सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वन स्वीकृति और भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों की नियमित पैरवी करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार ने वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026 के तहत विद्यालयी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनातियां की गई हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: आदेश के तहत विनोद प्रसाद सेमल्टी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं KS रावत को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ प्रभारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विनोद कुमार ढौंडियाल को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर का प्रभारी सचिव बनाया गया है। गोविंद राम जायसवाल को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के साथ प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। रणजीत सिंह नेगी को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नैनीताल नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल तथा लोक सेवा अधिकरण नैनीताल में नोडल अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दिए जाने से विभाग के प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से देहरादून में उत्तराखंड सब एरिया के डिप्टी GOC राम सिंह थापा ने मुलाकात की। इस दौरान कैंट क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृत ट्यूबवेल के लिए कैंट क्षेत्र में शीघ्र भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैंट युवा समिति के अनुरोध पर बीजापुर से कैंट क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और जल्द ही कैंट बोर्ड के माध्यम से ट्यूबवेल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कैंट बोर्ड स्थित अस्पताल को किसी निजी संस्थान के साथ अनुबद्ध किए जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत पौड़ी के उपजिला निर्वाचन अधिकारी FR चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और BLA 1 के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और घर घर सत्यापन अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रदेश में आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्रभावी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नई व्यवस्था सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान और पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करेगी। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास की गई 40 गतिमान परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए और विद्यालय शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। विनोद प्रसाद सिमल्टी बने माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं मोहसिन नकवी की गजल के साथ, आवाज गुलाम अली की।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी?
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
3: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
3: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
3: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
3: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
3: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
3: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
3: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
2: जी,
3: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
3: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
3: अरावली की कहानी।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
6: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत

0: आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
1: आह, क्या बात है
3: मैम।
1: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सो हम अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख

0: प्रमुख नदियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय।

0: नहीं हुआ?
1: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
0: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
1: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
0: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
1: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
0: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
0: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
0: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
0: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
0: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
1: हाँ, बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो,
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया।
1: कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ,
6: छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
1: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए। हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए।

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

उमंग NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। हम इस समय श्रोताओं को सुनवाते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं खेमुली देवी और साथियों के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

और अब बारिश के मौसम का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमाऊनी में, और ये है समोह स्वरों में बरखा गीत।

0: समूह स्वरों में गाए सी कुमाऊनी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11

0: वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि

0: ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए, सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

0: नजरिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री

0: आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है,
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है मशरूम की वैज्ञानिक काश्त। जानकारी दे रहे हैं श्री के मिश्रा।
1: खाद्य मशरूम की विश्व में लगभग 2000 प्रजातियां अभिलेखित की गई हैं। इनमें से 200 प्रजातियां प्रायोगिक, 60 व्यावसायिक एवं 10 प्रजातियां औद्योगिक स्तर पर उगाई जा रही हैं। देश में मशरूम का व्यावसायिक उत्पादन आखिरी 2 दशकों में वैज्ञानिकों एवं कृषकों के मिले जुले प्रयास से 1,20,000 टन पहुँच गया है, जिसका 50% से अधिक भाग सीमांत व लघु मशरूम उत्पादन इकाइयों

द्वारा तथा शेष औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राप्त होता है। देश के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशों में बढ़ती हुई सीमांत व लघु उत्पादन इकाइयाँ कृषकों की आय वृद्धि का विशेष स्रोत बन चुकी हैं। हमारे देश में मशरूम उत्पादन में आधे से अधिक उत्पादन अग्रणी प्रदेशों जैसे पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश से द्वारा होता है। उत्तराखंड का कुल मशरूम उत्पादन 8,000 टन है। मशरूम अनुसंधान व विकास की कई योजनाएं देश में चलाए जाने के कारण अब लगभग सभी प्रदेशों में मशरूम का उत्पादन होने लगा है। भारतवर्ष में प्रमुख रूप से 4 तरह के मशरूम की खेती की जाती है। ये हैं श्वेत बटन मशरूम, आस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम एवं धान के पुआल का मशरूम। इन मशरूमों के उत्पादन की विधि, वातावरण एवं माध्यम की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। इसी प्रकार इनकी उत्पादन क्षमता, बाजार मूल्य व मांग भी भिन्न भिन्न है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित श्वेत बटन मशरूम है और दूसरा स्थान आस्टर मशरूम का है। उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन मुख्यतया देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जनपदों तक सीमित है। प्रदेश के कुल उत्पादन में 2100 मैट्रिक टन हिस्सा फ्लैक्स फूड लिमिटेड देहरादून का है तथा शेष लघु एवं सीमांत स्तर की मशरूम उत्पादन इकाइयों द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से बटन मशरूम, जिसका कि वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है, इसकी खेती की जा रही है। दूसरी मुख्य प्रजाति ढेंगरी या ऑस्टर मशरूम है, जिसका कि वैज्ञानिक नाम प्लोटस प्रजाति है, व अन्य मशरूम का उत्पादन नगण्य है। मशरूम की खेती पौष्टिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें न केवल क्षुधा पूर्ति होती है वरन भरपूर पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जमीन एवं प्रति फसल कम समय की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन की 3 प्रणालियाँ हैं। इनमें से जो प्रथम प्रणाली है उसे हम सीमांत स्तर प्रणाली कहते हैं। सीमांत स्तर के मशरूम उत्पादन हेतु फसल कक्ष के रूप में झोपड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इनकी माप 20 फीट लंबी, 17 फीट चौड़ी एवं 12 फीट ऊंची अथवा 35 फीट लंबी, 18 फीट चौड़ी एवं 12 फीट ऊंची होती है तथा इन्हें बनाने में पुआल, सरकंडा, घास एवं बांस का प्रयोग करते हैं। भीतरी रैक का निर्माण बांस अथवा लकड़ी एवं सरकंडा द्वारा किया जाता है। मशरूम उत्पादक कंपोस्ट या तो स्वयं बनाते हैं अथवा वे पास्तुरीकृत कंपोस्ट की खरीद आपूर्ति केंद्र से करते हैं। इस प्रणाली में मशरूम की कुल पैदावार 12 से 16 किलोग्राम प्रति 100 किग्रा कंपोस्ट होती है। दूसरी जो उत्पादन प्रणाली है वो लघु स्तर उत्पादन प्रणाली है। यह प्रणाली उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार जिले में प्रचलित है। इसमें फसल कक्ष की माप 40 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा एवं 12 फीट चौड़ा अथवा 50 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 12 फीट ऊंचा रखते हैं। इसके लिए पक्के कक्ष का प्रयोग किया जाता है। रैक का निर्माण एंगल आयरन अथवा बांस से होता है, जिन पर 3 से 4 टायर में 10 से 12 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति बैग को रखते हैं। इस प्रणाली वाले कृषक कंपोस्ट या तो स्वयं दीर्घवीस से बनाते हैं अथवा कंपोस्ट आपूर्ति केंद्र से पास्तुरीकृत कंपोस्ट खरीदते हैं। इस प्रणाली में मशरूम की कुल पैदावार 12 से 18 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम कंपोस्ट होती है। तीसरी जो हमारी प्रणाली है उसे हम औद्योगिक स्तर उत्पादन प्रणाली कहते हैं और यह प्रणाली हमारा उत्तराखंड में फ्लैक्स फूड लिमिटेड देहरादून में स्थित है। इसमें इंसुलेटेड एवं वातानुकूलित फसल कक्ष के निर्माण किए जाते हैं। इसकी माप 83 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा व 12 फीट ऊंची होती है। रैक एंगल आयरन द्वारा निर्मित 4 टायर में 10 से 12 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति बैग रखने हेतु बनाए जाते हैं। इसमें केवल पास्तुरीकृत कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है तथा इसकी पैदावार 16 से 18 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम कंपोस्ट होती है। किसान भाइयों, सीमांत स्तर पर मशरूम की खेती हेतु जो हमारी प्रमुख आवश्यकताएं हैं उनमें से तकनीकी प्रशिक्षण, साधारण फसल कक्ष अथवा झोपड़ी, माध्यम जिसे कि हम कंपोस्ट भी कहते हैं, स्पान अथवा बीज, वातावरण मुख्य रूप से तापक्रम एवं आर्द्रता, पूंजी व बाजार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बटन मशरूम जो कि एगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से प्रचलित है प्रमुख है एवं उत्पादन

की दृष्टि से इसका विश्व में प्रमुख स्थान है। यह मशरूम विश्व में लगभग 31% भाग में उगाई जाती है। दूसरी मुख्य प्रजाति ढेंगरी या ऑस्टर मशरूम है, जिसका कि वैज्ञानिक नाम प्रोटस प्रजाति है। व्यावसायिक तौर पर खेती की जाने वाले मशरूम में बटन मशरूम सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस मशरूम को 14 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उगाया जा सकता है। कुल मशरूम उत्पादन का लगभग 80 से 85% भाग इसी की खेती से मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में साल में अधिकांश महीनों में इसकी खेती की जा सकती है। बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है। एगेरिकस की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, परंतु हमारे देश में एगेरिकस बाइस्पोरस की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। यह मशरूम छाते की तरह का होता है और इसमें टोपी तथा डंठल होता है। आरंभिक अवस्था में टोपी एक छोटी कली के आकार की होती है, जो बाद में मटर के आकार में हो जाती है और फिर इसका आकार बटन जैसा हो जाता है। इसलिए इस मशरूम को मुख्य तौर से बटन मशरूम भी कहा जाता है। इसकी टोपी सफ़ेद रंग की होती है, जो बंद होती है तथा डंठल से जुड़ी हुई होती है। टोपी के नीचे गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स एक झिल्ली द्वारा ढकी हुई होती है और इस झिल्ली को हम वेल कहते हैं। मशरूम की वृद्धि के बाद यह झिल्ली जो है वो फट जाती है और गिल्स हमको आसानी से साफ दिखाई देते हैं और तथा उसमें बीजाणु जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। टोपी खुल जाती है, इसका आकार बढ़ता है और मशरूम जो हमारा छाता का रूप ले लेती है। मशरूम की खेती के मुख्य रूप से चार प्रमुख चरण हैं। पहला जो चरण है उसमें वो है उपक सामग्री, जैसे कि हम कंपोस्ट कहते हैं, उसका निर्माण करना। और इसके निर्माण में अगर हम लघु अवधि द्वारा करते हैं तो 16 से 18 दिन का समय लगता है, और यदि हम इसके निर्माण के लिए दीर्घ अवधि अपनाते हैं तो इसमें हमको करीब करीब एक महीने का समय लग जाता है। दूसरा जो चरण है उसे हम कहते हैं उपज सामग्री में बीज को मिलाना या स्पान को डालना। तीसरी जो प्रणाली है उसमें हम स्पानिंग की हुई उपज सामग्री को ढकते हैं तथा उसके ऊपर 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटी केसिंग की तह बिछाते हैं। और चौथा जो चरण है उसमें फलन काय का निर्माण होता है और हम फलन काय का रखरखाव करते हैं। आवरण मृदा बिछाने के 12 से 18 दिन के पश्चात मशरूम का निकलना शुरू हो जाता है तथा यह मशरूम 50 से 60 दिन तक निरंतर निकलते रहते हैं। दिन में एक अथवा दो बार मशरूम को टोपी खुलने से पहले या हम जिसकी परध 1 से 1.5 इंच की हो उंगलियों के सहारे ऐंठ करके हम निकाल लेते हैं। मशरूम खुल जाने पर तथा छतरी बन जाने पे मशरूम की गुणवत्ता एवं बाजार मूल्य कम हो जाता है। किसान भाइयों, 1 किलोग्राम मशरूम पैदा करने में जो हमारा व्यय आता है वो लगभग 50 से 60 रुपये तक का खर्च होता है, जबकि बाजार में ताज़ा मशरूम 150 से 200 रुपये किलो तक बिकता है। इस प्रकार प्रति किलो हम 100 रुपये से 150 रुपये हम कमा सकते हैं। दूसरी जो हमारी मुख्य प्रजाति है जिसे हम ढेंगरी मशरूम या ऑस्टर मशरूम कहते हैं, इस मशरूम को हम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उगा सकते हैं। ढेंगरी की कई प्रजातियाँ विश्व में हैं, करीब करीब इसकी 40 प्रजातियाँ विश्व में हैं और जिनमें से जो मुख्य प्रजातियाँ हैं वो हैं प्लोटस सजोर काजू, प्लोटस ऑस्ट्रिएटस, प्लोटस फ्लैबलेटस, प्लोटस सैपिडस, प्लोटस फ्लोरिडा, प्लोटस इरिंगाई। ये जो प्रजातियाँ हैं इनका व्यावसायिक स्तर पर खेती हो रहा है। इस मशरूम के उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे उन सभी कृषि अवशेषों पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है जिनमें लिग्निन व सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ढेंगरी मशरूम की कुछ प्रजातियां शरद ऋतु में तथा कुछ को ग्रीष्म ऋतु में उगा सकते हैं, अतः इनका चुनाव अपने अपने क्षेत्रों की जलवायु को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। ढेंगरी मशरूम को मुख्य रूप से धान के पुआल, गेहूं के भूसे, मक्के का तना, सोयाबीन का भूसा एवं दलहनी फसलों पर उगाया जा सकता है, किंतु गेहूं का भूसा व धान का पुआल इस खेती के लिए उपयुक्त हैं। लाभ की दृष्टि से ढेंगरी मशरूम सफ़ेद बटन मशरूम की तुलना में अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इसमें समय और धन कम लगता है। इसकी जो फसल चक्र है वो भी काफ़ी कम है, इसे हम 1.5 से 2 महीने के समय में पूरी फसल ले सकते हैं। 1 किलोग्राम ढेंगरी मशरूम पैदा करने में लगभग 20 से 25 रुपये तक का खर्च आता है तथा बाजार में ताज़ा मशरूम 70 से 75 रुपये किलो तक बिक जाता है। इस प्रकार ढेंगरी मशरूम के उत्पादन से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक की शुद्ध लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। तकनीकी दृष्टि से उत्तराखंड में मिश्रित परिस्थितियां मौजूद हैं और प्रचुर मात्रा में कच्चा माल भी उपलब्ध है, परंतु फिर भी मशरूम की खेती को आशानुकूल सफलता नहीं मिल पा रही है। इसकी खेती तथा विकास में आने वाली

0: प्रमुख बाधाएं हैं समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव, अपर्याप्त गुणवत्ता इस्पान एवं कंपोस्ट आपूर्ति, प्रसंस्करण इकाइयों की कमी व विपणन असुविधा। यदि इन सभी बाधाओं का निवारण किया जा सके तो मशरूम की खेती में आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मशरूम की खेती का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। गुणवत्ता इस्पान एवं कंपोस्ट आपूर्ति केंद्रों की व्यवस्था होने से प्रशिक्षण प्राप्त लोग सुविधाजनक रूप से मशरूम की खेती कर सकेंगे। चूँकि अन्य फसलों व फलों की भांति मशरूम को भी अधिक समय तक ताजे रूप में रखना संभव नहीं है, अतः इसके विपणन व प्रसंस्करण हेतु समुचित व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। मशरूम की खेती को पर्याप्त बढ़ावा न मिलने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मशरूम के पोषकीय एवं औषधीय गुणों के बारे में आम लोगों को अनुभज्ञता है, अतः जरूरी है कि इसके पोषकीय एवं औषधीय गुणों को इसके लोगों को बताया जाए। इसी कारणवश यह उत्पाद देश के जनमानस में के भोजन के रूप में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इसलिए यह आवश्यक है कि मशरूम तथा इसके उत्पादों के प्रचार प्रसार के समुचित व्यवस्था की जाए।
1: मशरूम की वैज्ञानिक काश्त इस विषय पर डॉक्टर के मिश्रा से खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा प्रहलाद सहमेरा के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। संध्या 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे जीएसटी दिवस, चिकित्सक दिवस और हरी भरी रहे वसुंधरा वन महोत्सव पर ये चर्चा प्रसारित होगी। साइंस का संसार और आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा वन महोत्सव सप्ताह पर। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा जिसमें अनूप जलोटा के गाए भक्ति वंदन श्रोता सुन सकेंगे। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम सुनिएगा जिसमें आज की बातें पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित धान की खेती विषय पर होंगी, इस विषय पर होगी और चर्चा सुनिएगा धान की रोपाई और देखभाल। फिल्म संगीत हम सायंकालीन सभा में लेकर आएंगे। शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात 10:30 पर, रात्रि 8:00 लोकगाथा भनारी नैद का अंतिम भाग प्रसारित होगा। सुगम संगीत सुनिएगा रात 10:00। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार और आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक इरफान खान, मोहम्मद इरफान। श्रोताओं, मोहम्मद इरफान युवा पार्श्व गायकों में एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू कई चर्चित फिल्मों में गाकर चलाया है और आज 1 जुलाई को हम उन्हें ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं। आज उनका

तो मोहम्मद इरफान को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और शुरुआत करते हैं उन्हीं की आवाज़ से। ये फिल्म है किक, और इस फिल्म के इस गीत को लिखा है मयूर पुरी ने और हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है।

तो श्रोतो, 1 जुलाई 1984 को जन्म हुआ हैदराबाद तेलंगाना में मोहम्मद इरफान का। उन्होंने हैदराबाद की ऑल सेंट्स हाई स्कूल से पढ़ाई की, और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनके एक टीचर ने उनकी गायकी की जो प्रतिभा है उसको पहचाना, और उन्होंने मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के ज़रिए एआर रहमान तक अपनी पहुंच बनाई, और ये उनके करियर की यहीं से एक बड़ी शुरुआत हुई। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने एक गायन के रियलिटी शो में हिस्सा लिया और वहाँ से उन्हें पहचान मिली। इसके अलावा जो उन्होंने फिल्मों में गाने गाए, उनके मशहूर गाने फिर मोहब्बत, मर्डर 2 का, दिल संभल ज़रा मर्डर 2 फिल्म से ही, यारियां फिल्म से बारिश, और एक विलन बंजारा गाना, और सिटी लाइट्स फिल्म का गाना मुस्कुराने जैसे कई गाने हैं जिन गीतों ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया।

तो गीत और संगीत मिथुन का था और मोहम्मद इरफान की आवाज़ एक विलन फिल्म में थी। तो श्रोताओं, मोहम्मद इरफान ने हिंदी फिल्म जगत में तो गाने गाए ही हैं एक से बढ़कर एक। इसके अलावा तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, बांग्ला और मराठी सहित कई भाषाओं में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया है, जिनमें साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, मीर ब्रदर्स, अनजान, मिथुन, जीत गांगुली जैसे सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक शामिल हैं। अपनी बेमिसाल आवाज़ से सजे नगमों से आगे भी मोहम्मद इरफान दर्शकों को एंटरटेन करते रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। आगे भी वो युवाओं के बीच अपनी आवाज़ से अपनी खास जगह बनाते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आज उनके जन्मदिन पर। और सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ से सजा एक और गीत, ओ माय गॉड फिल्म से। मोहम्मद इरफान की आवाज़ है, समीर का गीत और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

तो श्रोताओं, एक ही फनकार के आज के फनकार थे मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं और हम लेकर आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

बांसुरी, सुर से सजी, बांस से बनी, मोहन के अधरों से लगी, जनमानस को सम्मोहित करने वाली मधुर मिठास और सुरमई मदमस्त कर देने वाली बांसुरी एक ना जाने इसके कितने स्वरूप। कान्हा के संग सदा रहने वाली, मधुर तान छेड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड को सम्मोहन में डालने वाली बांसुरी से

जुड़ी ना जाने कितनी बातें, कितने किस्से हमने सुने हैं। इन किस्सों को गुनाह है। हमारे भारतीय संगीत में भी बांसुरी का अपना अहम स्थान है। बांसुरी के सुर सजते हैं तो संगीत पूर्ण माना जाता है। ऐसे ही हमारे देश में बांसुरी के पर्याय माने जाते हैं महान कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। उनके नाम में ही हरि है तो हुए ना बंसी प्रसाद चौरसिया। उन्होंने कभी अपने साक्षात्कार में बताया था कि ये कैसे हो गया मेरी भी समझ में नहीं आता। संभवतः भगवान ने जब हाथ में बंसी पकड़ाई तो सोचा होगा कि नाम भी उनके जैसा ही होना चाहिए, हरि, हरि प्रसाद चौरसिया। आज उन्हें हम खास तौर पर याद कर रहे हैं। आज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का जन्मदिन है तो उन्हें हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन की।

तो श्रोतों, 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज के सेनिया घराने में जन्म हुआ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने जब बांसुरी थामी तो वो दौर था जब वो बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना बांसुरी में फूंक दी जाए। और सच में वो जो उनकी एक सोच थी वो आगे चलकर इतना बड़ा मकाम उन्हें दे जाएगी, ये कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को भी नया आयाम दिया, एक मकाम दिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने। और बांसुरी को वो दिव्य वाद्य मानते हैं, संगीत के सातों सुरों को बांसुरी के माध्यम से उन्होंने दिव्यता प्रदान की। वहीं भारतीय सिनेमा जगत में भी उनकी बांसुरी की मनमोहक धुनों ने लोगों को बेहद आकर्षित किया है, सम्मोहित किया है। और शुरुआत उन्होंने की है फिल्मों में अपनी बांसुरी की धुन देकर। साल 1964 में प्रदर्शित फिल्म बेटी बेटे के गीत राधिके तूने बंसुरी बजाई में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपनी जादुई फूंक का सम्मोहन भरा। और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया, शैलेंद्र का।

संगीत था और शंकर जयकिशन का संगीत। तो बेटी बेटा बेटी फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, बेटी बेटे फिल्म में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने अपनी जादुई बांसुरी का सम्मोहन दर्शकों तक पहुंचाया, तो वहीं फिल्म आई आखिरी खत। और इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहारों मेरा जीवन भी सवारो। इस गीत में जिन महान कलाकारों ने वादन किया उनमें संगत किया था, संतूर पर पंडित शिव कुमार शर्मा ने और बांसुरी पर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने, तो ये महान दिग्गज कलाकार इसमें शामिल थे। तो ये गाना भी आइए सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल और खय्याम साहब का बेहद मधुर संगीत।

तो श्रोताओ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, सम्मोहित किया, आकर्षित किया। उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन संगीत की तानों में उनका मन कुछ यूं रमा कि वो संगीत के ही होकर रह गए। मात्र 13 साल की आयु में उन्होंने किसी लड़के से बांसुरी मांगकर पहली बार धुन बजाई, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पंडित राजाराम और बनारस के बांसुरी वादक पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी, और पंडित जी ने केवल शास्त्रीय संगीत को नवीन बुलंदियों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि बांसुरी को अंतर्राष्ट्रीय तान बनाकर भारत को गौरवान्वित किया। और फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने अपने बेहतरीन संगीत के ज़रिए एक अपनी ख़ास पहचान बनाई, और हिंदी सिनेमा जगत में पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि जाने माने मशहूर संतूर वादक हैं, और पंडित शिव हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक, इन दोनों ने जोड़ी बनाई शिवहरि के नाम से, और एक से बढ़कर एक मधुर संगीतों को रचा इन फिल्मों में। जैसे चांदनी फिल्म को याद कीजिए, इसमें लता मंगेशकर बाबला मेहता की आवाज़ों से सजा ये खूबसूरत गाना पेश कर रहे हैं। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और शिवहरि जी की मधुर तान है।

तो मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के साथ लंदन में हुए रविंद्र संगीत केंद्रित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी पहली बार 1966 में विदेश गए और इस यात्रा के दौरान पंडित जी ने उन संभावनाओं का गहरा विश्लेषण किया जो भारतीय संगीतकारों के लिए जाहिर थीं। धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका के द्वार उनके लिए खुलते गए और अंततः वो समय भी आया जब पंडित जी भारत से ज़्यादा अपना समय विदेशी ज़मीन पर गुजारने लगे। बीबीसी के लिए 2 सिम्फनियों का उन्होंने निर्माण किया। साल 1989 में एक सरकारी कॉलेज में उन्होंने अध्यापन भी किया और इस तरह वो हर जगह अपनी बांसुरी का सम्मोहन बिखेरते रहे। बहरहाल फिल्मों में जो उन्होंने अपने संगीत का सम्मोहन बिखेरा, डर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। शिवहरी का संगीत है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और फिल्म का नाम डर। आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत।

तो श्रोताओं, हिंदी फिल्म जगत में तो शिवहरि के मशहूर गीत हम सुनते ही रहते हैं। उनके संगीत से सजे जितने भी गाने हैं वो बेमिसाल हैं, और विभिन्न अन्य जुबानों में भी उन्होंने संगीत दिया है, जैसे उड़िया, बांग्ला, दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी उनका संगीत बेहद जाना पहचाना रचा बसा संगीत है। ओडिया फिल्म माँ के लिए उन्होंने एक साउंड ट्रैक भी तैयार किया। इस तरह से संगीत की दुनिया केवल शास्त्रीय संगीत तक ही उनकी सीमित नहीं रही, बल्कि संगीत के जरिए उन्होंने दूर दूर तक अपनी पहचान बनाई। बहरहाल, लम्हे फिल्म का गाना पेश है, हरिहरन की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत और शिवहरि का बेमिसाल संगीत।

बॉलीवुड में कई फिल्में हैं जिनका संगीत आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है, जैसे चांदनी, लम्हे, सिलसिला, साहिबा, डर, फासले, विजय, परंपरा जैसी कई फिल्में हैं जिसमें इस जोड़ी ने अपना बेमिसाल संगीत दिया। और ये मधुर तराने इतने सुहाने हैं कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं तो तरोताज़ा हो जाते हैं। जैसे कि सिलसिला फिल्म का ये गाना जो लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में है, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है, शिवहरी का बेमिसाल संगीत और फिल्म सिलसिला, आइए सुनते हैं।

सच कहें तो श्रोताओं, पंडित जी ने सुरों की बारादरी को गुलजार किया, वहीं संगीत की बिरादरी को मजबूती प्रदान की। जटिल माने जाने वाले शास्त्रीय संगीत को जन रुचि का विषय बनाने वाले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी लिविंग लेजेंड हैं। उनका नाम सुनते ही कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि तरंगित हो जाती है। बांस की बनी साधारण सी बांसुरी जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के हाथों में होती है, उनके होठों पर लगती है, तो इस बांसुरी में मानव हृदय को मोह लेने वाली असाधारण शक्तियां समाहित हो जाती हैं। फिल्मी सिनेमा में शास्त्रीय संगीत को पुनर्जीवित करने वाले महान कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हमारे प्रेरणा स्रोत और हैं, हमेशा रहेंगे, और उनकी बांसुरी की गूंज हमेशा इस ब्रह्मांड में गुंजा

आज इस महान कलाकार को उनके जन्मदिन की हम एक बार पुनः ढेर सारी अनंत असीम शुभकामनाएं देते हैं, इस आशा के साथ कि वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और बांसुरी में उनकी जो सम्मोहन की शक्ति दर्शकों को आह्लादित करती है, सम्मोहित करती है, वो सम्मोहन हमेशा बनाती रहेंगी। और एक और उनके संगीतबद्ध फिल्म से हम गाना चुन रहे हैं, बेहद खूबसूरत गाना है, शिवहरी का संगीत है, तो जाहिर है अपने आप में बेमिसाल होगा ही। शहरयार ने इसे लिखा है और लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। फिल्म है फासले।

तो श्रोताओं, चुपचाप धड़कनों संग सुकून के साथ शिव हरि का संगीत सुनते रहेंगे, हम गुनगुनाते रहेंगे और इन महान कलाकारों के आगे हमेशा नतमस्तक रहेंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीत का सुरीला सफ़र यहीं तक। अंजू पांगती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे ये सभी प्रसारण आप मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी के बागेश्वर FM 101.5 MHz पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में

0: परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से ही बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुमाऊँनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर और हमारे आज के कलाकार हैं प्रहलाद सिंह मेहरा।

जानी को बागा जिले होलो देखी रोलो त्योर मेरो भागा अब पानी में फटक मारी अरे न बुझनी आगा ही माचा अरे कांचो त्योरो जले भी कोड़ा इकली किले कांचे कड़ा हर मेरा खब मोही माचा अरे कांचो त्योरो जले भी कोड़ा इकली किले कांचे कड़ा हर मेरा खब मोही माचा।

अरे भैंसी ले बाबर धूसो बुंगड़ी ले माला, अरे बूढ़ा हुना चाटी खान्यो, अरे त्योरो जन जाला ही माचा, अरे कांचो त्योरो जलेबी को डाम, ये कली किले कांचे थोड़ा हल्दी।

प्रहलाद सिंह मेहरा के गाय से कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। आज शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का समय रहेगा की बात का विषय रहेगा GST दिवस, चिकित्सा दिवस और हरी भरी रहे वसुंधरा वन महोत्सव, साइंस का संसार और एक्सपोस्टल मिशन और इतिहास के पन्नों से जानेंगे आज का इतिहास। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं रोजाना शाम 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई। साथ ही सुनेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि के बारे में। शाम 6:41 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत, आज के कलाकार होंगे अनूप जलोटा। शाम 7:00 किसान भाई सुनते हैं अपना कार्यक्रम किसान वाणी, इसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित धान की खेती। साथ ही आज की सलाह किसान भाई सुनेंगे धान की रुपाई व देखभाल और अपशिष्ट फसल निस्तारण। लोकगाथा बनारी नृत्य का अंतिम भाग आप सुनेंगे आज रात्रि 8:00।

आज रात 10 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष में, और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है प्रातः 5:53 पर। विचार बिंदु आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनिएगा कल प्रातः 6:10 पर। कल शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 10 बजे समय रहेगा क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अमल एंटनी का सुगम संगीत और गार्गी मधु का लोक संगीत। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। विविधा आप सुनेंगे कल प्रातः 6:50 पर। आज की बात का समय रहेगा कल प्रातः 6:40 पर। श्री रामचरितमानस गान पाठ का भाग 142 सुनिएगा कल प्रातः 7:10 पर। कल प्रातः 7:40 पर आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव पर पर्यावरण प्रेमी व स्तंभकार श्री कमल कुमार जोशी से संजय जोशी की भेंट वार्ता। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का

प्रसारण समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। खेती की बातें ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं खेती विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर शिव दयाल। महिलाएं सुनती है अपना कार्यक्रम अर्पण दोपहर 12:30 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेंगे वन रहेंगे तो हम रहेंगे, वन महोत्सव सप्ताह और अल्पसंख्यकों हेतु योजना। साथ ही बहनें सुनेंगी धरा के श्रृंगार का उत्सव वन महोत्सव विषय पर। सुश्री हेमा नेगी व दीपा मिश्रा वन आरक्षी वन प्रभाग अल्मोड़ा से मंजू बोरा की बातचीत। हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है 5:00 हिंदी समाचारों के साथ, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम युवाणी, जिसके अंतर्गत आज की बात का विषय रहेगा विश्व खेल पत्रकार दिवस और रोजगार समाचार युवा साथी सुनेंगे। साथ ही जानेंगे आज का इतिहास। 5:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसानवाणी 7:00, जिसमें आज की बातें होंगी धान के खेत में खाद की मात्रा व मिट्टी की जांच। वहीं आज की सलाह रहेगी खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर और चर्चा की जाएगी वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता विषय पर। कल संध्या 6:41 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। कलाकार होंगे अनुपमा देशपांडे और अनूप जलोटा। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी में। सुबह 11:30 पर लोकसुर में, दोपहर 2:00 उत्तराखंड की लोकगीत में और 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के तहत धरोहर। यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल रात्रि 9:30 पर। कल सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरंग। सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा कल दोपहर 1:15 पर। रात्रि 8:00 सुनेंगे सबरस और रात्रि 10:00 सुनिएगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्जर में। सुबह 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में। सुबह 11:00 सैनिक भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 12:00 मेरी पसंद। दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार। अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्म गीत। 7:40 पर फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के तहत। ये थी जानकारी आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, आज 1 जुलाई है। आज का दिन भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आज ही के दिन साल 2017 में देश में माल और सेवा कर यानी GST लागू किया गया था। इसलिए हर साल 1 जुलाई को हम सब GST दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आपको याद है साल 2017 की 30 जून और 1 जुलाई की वो दरमियानी रात जब संसद की ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में ठीक आधी रात को घंटा बजाकर इस नए कर कानून का स्वागत किया गया था। इस एक ऐतिहासिक कदम ने देश के दर्जनों अलग अलग टैक्सों को ख़त्म कर दिया और पूरे देश को मिला एक नया मंत्र, एक राष्ट्र एक कर एक बाज़ार यानी GST। साथ ही दोस्तों, आज का दिन उन देवदूतों को समर्पित है जो 2400 घंटे अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सेहत की रक्षा करते हैं। जी हाँ, आज पूरा देश राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी

0: नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहा है। भारत में इस दिन को मनाने का इतिहास बहुत खास है। आज महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि है। चिकित्सा जगत में उनके अभूतपूर्ण योगदान को याद करने और देश के सभी डॉक्टरों के प्रति सम्मान जताने के लिए साल 1991 से इस दिन की शुरुआत हुई थी।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: तो साथ ही आज से शुरू हो चुका है जुलाई का महीना। जुलाई का महीना आ चुका है। आसमान में काले घने बादल छाए हैं और मानसून की रिमझिम फुहारी धरती की प्यास बुझा रही है। इस सुहावने मौसम के साथ ही शुरुआत हो चुकी है देश के सबसे बड़े हरित उत्सव की, जिसे हम कहते हैं वन महोत्सव। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला ये सप्ताह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी धरती माँ के श्रृंगार का पर्व है। साल 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी ने इस सुंदर आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि पेड़ केवल लकड़ी या फल नहीं देते, बल्कि वे जीवन का आधार है। आज जब हम कंक्रीट के जंगलों के बीच सांस लेने के लिए तरस रहे हैं, तब इस त्यौहार की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी, सूखा और बेमौसम बरसात जैसी चुनौतियां हमें सचेत कर रही है। इसका केवल एक ही समाधान है, हरी भरी रहे वसुंधरा। धरती तभी हरी भरी रहेगी जब हम और आप मिलकर पौधे लगाएंगे। तो आइए मानसून की इन बूंदों का स्वागत करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब सुनाते हैं आपको अल्मोड़ा यूथ क्लब द्वारा आयोजित नौलोत्सव में जनमानस पर युवाओं के विचार।
5: असल में हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं और भी काफी सारे पर्व बनाते हैं, लेकिन हमने कभी उनके लिए ये चीज नहीं करना चाहा जिन्होंने हमें हर चीज प्रोवाइड कराई है। हमारी कॉपी किताब के जिल्द पट्टे, उनके पेज, हमारे पेड़ पौधे, हमारी प्रकृति, हमने कभी इनके लिए कभी कुछ करने का कभी ट्राई नहीं करा, जबकि इन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोगों ने कभी इनको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कुछ नहीं देने की कोशिश करी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसा उत्सव बनाए, ऐसा त्योहार बनाए जो सिर्फ नेचर के लिए हो। तो आज हमने क्या प्रोग्राम बनाया पता है आपको? नौलोत्सव, नौलो का उत्सव। तो इसलिए हम लोग आज जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो नौले के पास में कर रहे हैं। ये हमारा नौला है, ये हमारा पारंपरिक स्रोत है जो अब खत्म होने की कगार पे है। आपको पता है कि अल्मोड़ा में 360 नौले हुआ करते थे पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मगर आप कितने होंगे? एनी गेस? बस 60 ही नौले, 300 का आ गए, सब सूख गए और खत्म हो गए। तो अब हमारा प्रयास है कि इन 60 नौलों को ना कहीं हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। तो उनमें से एक नौला ये है जिसको बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जिसमें आप सभी का सहयोग है। ये आज की जो हमारे टीचर है वो है हमारे सर। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, नंदन राम जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव हमें सुनाए, इस नॉलेज के साथ आपने जो समय व्यतीत करा इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताए। तो सर प्लीज।
6: हमें बचपन से याद है, हम छोटे छोटे 3 बच्चों के बराबर थे, तो हम लोग यहाँ गाय चराने के लिए आया करते थे, गाय बच्ची बकरियाँ। तो इसी जंगल में हम लोगों ने बचपन काटा अपना और इसी नॉलेज से हम लोग पानी पिया करते थे, गाय बच्चों को पानी पिलाया करते थे इसी नॉलेज से। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम आया थे यहाँ से, आया करते थे घूम के, तो यहाँ गाय बच्चों को भी पानी पिलाते थे, कुछ भी पीते थे, यही नहाते थे, कपड़े भी धोके, बचपन में ऐसे शरारती थे हम लोग, तो यही नहा धोया करते हम चलते थे। और सुबह को हम लोग आया करते थे यहाँ, यहीं से बांस का डंडा होता था, महंगा होता था, दो कनिष्ठर पानी भरका, एक आगे पीछे कर

0: तो यहाँ गाय बच्चों को भी पानी पिलाते थे, खुद भी पीते थे, यही नहाते थे, कपड़े भी धो के, बचपन में ऐसे शरारती थे हम लोग, तो यही नहा धोया करते हम चलते थे। और सुबह को हम लोग आया करते थे यहाँ, यहीं से बांस का डंडा होता था, महंगा होता था, दो कनिस्टर पानी भरका एक आगे एक पीछे करके यहाँ से अपने घर ले जाया करते थे, यही पास ही में हमारा। तो इस तरह से हमने इस नौले में बचपन से आज तक तो इसी नौले को देखा है, और यहीं से हम लोग एक नौला यहाँ नहीं था, एक यहाँ नीचे था, एक यहाँ ऊपर था, एक इसके पीछे था, कई नौले थे यहाँ पर, आदि चार पांच नौले थे। आज तो सब सूखने के कगार पे है और टूटने के कगार पे है, एक यहीं से आगे एक नौला और है। तो हम लोगों ने बचपन यहीं नौले में काटा, इसी जगह में काटा, तो यह बचपन हमारा। जैसे आप लोग बचपन से शरारती थे, तो आज आप लोग इस नौले में पर्यावरण के उससे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप जैसे ये पेड़ फली फूले और आप बच्चे भी फली फूले, जैसे ये पेड़ दिन पर दिन बढ़ेंगे वैसे आप लोग बच्चे भी बढ़े। आप क्योंकि बचपन में जो बच्चा पेड़ लगाता है तो वो पेड़ बहुत जल्दी होता है।
1: नमस्कार, मैं जिज्ञासा विद श्री कृष्णा विद्यापीठ की छात्रा कक्षा 7 से आज आपके सम्मुख एक बेहद गंभीर विषय पर अपनी राय रखना चाहती हूँ एक कविता के माध्यम से। अक्सर हम बैठकर सभी चीजों को सोचते हैं, खाना गलत है, सरकार गलत है, बस यही चिल्लाते हैं, पर क्या कभी हमने यह सोचा कि घर से आते वक्त प्लास्टिक की थैली रास्ते पर क्यों फेंकते हैं? गाड़ी का धुआं हो या पानी की बर्बादी, कहीं ना कहीं हम सब भी हैं इसमें शामिल। फिर क्यों करते हैं उम्मीद किसी और से कि वही आगे बनाएंगे इस धरती को रहने के काबिल? बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बन जाता है। जब एक एक की बूंद बूंद बन जाएगा तभी तो सूखता हुआ समंदर वापस लहराता है। कागज के पन्नों को बेकार मत समझो, ना जाने इसमें कितने पेड़ों की जान बसी है। और पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमें प्रकृति से हमेशा अपना रिश्ता ऐसे निभाते रहना चाहिए। कविता के अंत में मेरा आपसे बस एक सवाल है कि हो सके तो ये सवाल खुद से पूछना कि अगर हम इस धरती को नहीं बचाएंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? बदलाव की उम्मीद दूसरों से नहीं बल्कि खुद से कीजिए। और एक बार इस सवाल का जवाब खुद से पूछना, और इस बार दिमाग से नहीं थोड़ा दिल से भी सोचना। धन्यवाद।
2: माय नेम इज जोशी, आई स्टडी ग्रेड 8। तो आज आपको के बारे में कविता सुनाने जा रहा हूँ। पेड़ पौधे करते हैं बात, देते हैं शुद्ध बात, फूल फूल और छाया देते, जीवन भर ये साथ बातें, जलवायु और हरियाली इनसे है सबकी खुशहाली। अब हम सब मिलकर करें विचार, प्रकृति पर हो ना कोई वार, कचरा कम और पेड़ लगाए, पर्यावरण का मान होगे तभी बनेगा सुंदर। धन्यवाद।
3: माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, अर्थात ये जो भूमि है हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं। तो एक छोटी सी कविता कहूंगा कुछ पंक्तियाँ कि ये पृथ्वी का वर्तमान क्या हाल हुआ है कि इस जल भरी धरा में, इस जल भरी धरा में सब जलकर राख हो रहा है, इस जल भरी धरा में सब जलकर राख हो रहा है। पृथ्वी का खेल है, प्रकृति का खेल है, जल भी उड़कर भाप हो रहा है, जल भी उड़कर भाप हो रहा है। जलना भी जरूरी है, जल का उड़ना भी जरूरी है, बलना भी जरूरी है, जल का उड़ना भी जरूरी है, जल जल कर मनुष्य का समझना भी जरूरी है, जल जल कर मनुष्य का समझना भी जरूरी है। हिमालय बता रहे हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं हो रही है खुद बता दे रही है कि मनुष्य ने कितना प्रकृति के ऊपर अपना अतिक्रमण कर दिया। कि हिमालय बता रहे हैं, नदियां समझा रही हैं, हिमालय बता रहे हैं, नदियां समझा रही है, अभी अगर न समझे तो जल भी कुछ समय में भाप हो जाएगा। जल रहे हैं जंगल, जल रही है जमीन, जल स्तर बढ़ रहा है और घट रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है घट रहा है। तो विकास जब होता है, जो विकास वास्तविकता में जो विकास होता है वो विकास पहले की तरह नहीं है, अभी हो रहा है कि विकास के लिए हजारों पेड़ काट दिए जा रहे हैं। बड़ा ही दुख का विषय है कि विकास विकास शब्द ही कहाँ उठते हैं, पेड़ जंगल कहाँ उठते हैं, थरथराने लगती हैं जमीनें, पहाड़ों पर पसीना आ जाता है, नदियों के माथे पर पसीना आ जाता है, और शब्द सुनते ही विकास का कहाँ उठते हैं पेड़। पुराने टाइम में एक कहावत थी, नौले की बात हो रही थी अभी, तो पुराने टाइम में अम्मा लोग बताते थे कि कहावत कि नौ बसलो तब गौ बचल, नौ बसलो तब गौ बचल, नौ छोकलो गौ दुखल। मतलब यही है कि अगर नौला बचाओगे तभी गांव बचेगा, शहर बचेगा, और अगर नौला दुखी होगा तो मनुष्य खुद ही दुखी हो जाएगा। धन्यवाद।
4: कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत अभी आपने सुनी अल्मोड़ा यूथ क्लब द्वारा आयोजित नौलोत्सव में युवाओं के विचार। चलिए अब सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब हमारे आज के अंक साइंस के संसार की ओर, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे एक्सपोसेट मिशन के बारे में। दोस्तों, भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन एक्सपोसेट ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को खोजने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक्सपोसेट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा विशेष एक्सरे पोलरीमेट्री मिशन है। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C5A रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे चमकीले खगोलीय पिंडों से निकलने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करना है। इसे श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। ये लगभग 650 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस उपग्रह का जीवन काल लगभग 5 वर्ष है। उपग्रह में 2 मुख्य वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जिसमें पहला है पॉलिक्स। ये उपकरण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर द्वारा बनाया गया है। ये माध्यम एक्सरे ऊर्जा रेंज में एक्सरे के ध्रुवीकरण की दिशा और मात्रा को मापता है। और दूसरा है एक्सपेक्ट। ये उपकरण इसरो द्वारा बनाया गया है और ये 0.8 से 15 की ऊर्जा सीमा के भीतर एक्सरे का स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग डेटा प्रदान करता है।
1: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
2: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
1: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
2: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
1: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
2: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, हर दिन का अपना एक ख़ास महत्व होता है। ऐसे में 1 जुलाई के दिन भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। तो चलिए रूबरू करवाते हैं आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से, जिसमें पहली घटना है भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में आज ही के दिन हुई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। आज SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। 1949 में स्वतंत्रता के बाद आज ही के दिन त्रावणकोर और कोचिन रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया था, जो आगे चलकर आधुनिक केरल राज्य का आधार बना। 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत कनाडा को एक स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में मान्यता मिली थी। आज वहां कनाडा डे धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग 156 सालों से ब्रिटिश शासन के बाद 1 जुलाई 1997 को हांगकांग की संप्रभुता आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दी गई थी। 1881 में टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल आज ही के दिन की गई। दोस्तों, धूप के चश्मे एक प्रकार के सुरक्षात्मक पहनावे हैं, जिन्हें प्राथमिक रूप से आंखों की सुरक्षा और सूरज की तेज रोशनी के कारण होने वाली परेशानी से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में ये सनचीटर्स के नाम से भी जाने जाते थे। 1 जुलाई से पहले धूप के चश्मे का आविष्कार 12वीं सदी में चीन में हुआ था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक गुप्त गठबंधन का गठन आज ही के दिन किया गया था। 1938 में आज ही के दिन मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। 1933 में परमवीर

चक्र विजेता भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। कार्यक्रम में एक बार फिर से ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम में बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर और जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारे कल का प्रश्न था, साल 2013 में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसका सही उत्तर है साल 2013 में C.N. राव चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ था। अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें, तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411001122। कल फिर होगी मुलाकात एक नए रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए लीजिए इजाज़त अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:45 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

हमर प्राण, डायबोट हमर प्राण छै, और इनू को अगर नुकसान हो तो हमर पूरी पीढ़ी को नुकसान हो। देखियो डायबोट निकाटने के बाद अगर हम कहूँ तो डायबोट आखिर हमर लीजिए एतुक महत्वपूर्ण किला छै, एतुक जरूरत हमको डायबोटक किला छै। देखियो अगर हम थोड़ा सा इस पर विचार करूँ तो हम देखलूँ कि जो डायबोट द्वारा निर्मित जगह बनू जकर हम वन गुनू वो हमर लीजिए कतु महत्वपूर्ण छो। अब देखो कि हमारे यहाँ प्राचीन काल बटी मनखी और जंगो जिनुक संबंध आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध छू, बिल्कुल खास दगड़ू जो संबंध छू। अब पर्यावरण जो संतुलन छू वो का हम अगर बनान चाहनु तो बिक लीजिए जरूरी छू वन संपदा द्वारा ही हम पर्यावरण को संतुलित कर सकनू, और जंगो द्वारा ही हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकनू, और जो द्योग मात्रा ही और जो भूमि कटाव पर नियंत्रण हूँ उकुल हम कर सकनू जंगलों द्वारा, और जंगलों द्वारा हमको मिलूँ ईंधन चार लकड़ और दगड़ दगड़े कई किस्मक बहुमूल्य जीवनदायिनी औषधि ये सब हमको डायबोट और जंगलों द्वारा मिली। अब अगर हम भारतीय शास्त्रों की बात करूँ तो भारतीय शास्त्रों में ले बोट के काटन पाप मानी वो और बोट को रोपण पुण्य मानी जा, इतन ठूल बात हमार भारतीय शास्त्रों में लिखी गई। और अग्नि पुराण में तो यहाँ तक कही गो कि 10 चलन के एक बोटक बराबर मानी गो। अब कतन महत्व हमार डायबोटन के देगो। पर्यावरणिक दृष्टि अगर हम देखूँ तो कम से कम एक तिहाई जगह हो जरूरी छू। अब जगह की करनी कि बादलन के अपन ओर आकर्षित करनी और यह धरती के जलविहीन होने में बचानी। जगह गाढ़ गधेरा किनारा माट और जमीने की उपजाऊ शक्ति के लिए बचेवे धरनी, और दगड़ दगड़े पहाड़क ढलान में ज्यादा द्योग को प्रभावन के लिए कम करने में सहायक होनी। जंगल ने जो अधिकता छू वील पानी जमीन में ज्यादा मात्रा में सूखी जा। बोटनक जो जड़ होनी वो मटामुड़ दबी होनी जय कारण भूस्खलन कम हो, बाढ़ पर नियंत्रण बनी रहूँ। जंगो मनखिक भोजन में उपयोग होने वाले कई प्रकारक हमों के पदार्थ लोग उपलब्ध करानी, और जो हमार ढोर डंगर और जानवर होनी उन लीजिए घा लकड़ झाड़ पात सब कुछ हमको जंगों में मिलू। अब हमारे पहाड़ की जो खेती छू उला हमारे जंगों पर निर्भर छू। खाद बनाने के लीजिए हरी और सूखी पतेल, कृषि यंत्र बनाने के लीजिए हमको लकड़ और जानवरों को हिष्ट पुष्ट बनाने के लीजिए खुराक सबको जंगों में मिली। उद्योगों के संचालित करने के लीजिए कतो ठूल बात छू कच्चे माल यला हमको जंगों बटी मिलने रहो। अब देखो जाड़ डाली टुपरी ठेकी चटाई मानहिर सूप जतुल हमार घर में प्रयोग होने वाले काम छे, हमार खेती किसानी में प्रयोग होने वाले काम छे, यूँ सबे किस्मत चीज ले हमको इनों को बनाने के लिए जो सामान मिलूँ उला जंगों को लकड़ू बट मिलूँ। अब जबकि अगर हम घर बनाना चाहनो तो घर बनाने के लिए मकान बनाने के लिए लकड़ हो गए रंग हो गए वार्निश बिरोज कागज बनाने के लिए पल्प जो कागज में हम लिखनू जमा हम नंतिन पढ़नी जमा किताब छपनी उला पल्प बनाने के लिए जो डायबोट होनी उला हमको जंगों बटी मिलूँ। कि मनखिक जीवन को स्वस्थ धारणा के लीजिए हम भली कने बुले सकूँ चल सकूँ हिट सकूँ भल बात कर सकूँ यक मनखी को स्वस्थ रखने के लीजिए व्यक्त जीव को स्वस्थ धारणा के लीजिए कई किस्मक औषधि लय हमको जंगों बटी मिलनी। तो दगड़ियो जंगो सिर्फ जंगो निशेन डायबोर्ड निशेन हजारों लाखों चढ़नक घर हूँ कीड़ा मकौड़ा जिनको हम देखन उनर पूरा एक पारिस्थितिकी जंगों में बनी हुई। तो जंगल का जो महत्व छू अगर हम थोड़ा गहराई सोचू तो हमें समझ में हूँ कि हमारे प्रकृति में कोई डायबोट बेकार न हाँ हम भले ही कह सकनू तो डायबोट के काम न है यार, लेकिन ना वी कोई न कोई प्रकृति में महत्व छू तब वो प्रकृति में उग रखो। तो दगड़ियो हम तो यही कुल कि वन महोत्सव में सबसे भली बात ये हो सकें कि हम प्रकृति दगड़ एक संवेदनशील तरीके व्यवहार करो उनर महत्व को समझो और आने वाली पीढ़ियों के जीवन का भल बनाने के लिए सोचो तब यह वन महोत्सव जो उद्देश्य छो वो सफल हो सकूँ।

0: श्रोता युची प्रहलाद सिंह मेहरा जनस्वर में यह गीत आप लोग सुनो और बहुत सुंदर गीत जमे जोहार घाटी सुंदर वर्णन करीब और देखियो बात ले बिल्कुल साझी छू कि प्रकृति में अलग अलग तरफ हमारे उत्तराखंड में कई सारे घाटी से जनर अपन खूब विशेषता ही अलग अलग विशेषता ही कोई इलाके में खूब सारे यश प्रकार आल पाई जानी जो मैदानी क्षेत्रों में नहीं हों या कुछ इलाकन में ऐसे फल फ्रूट पाई जानी जो कि अपन खास जलवायु के कारण कुछ विशेष औषधि गुणों के लिए हुई तो यह प्रकृति ही उपहार छू जैसे हम आज वन महोत्सव और कोरोना नगरी की यक संरक्षण का जरूरी छू। अब देखियो वन महोत्सव बारे में हम आज बातचीत कर रहा कि विंसर वन्य जीव विहार जिल अल्मोड़ में कार्यरत वन दरोगा प्रशांत चंदगढ़ यो बातचीत तो आओ आपको सुनानू उन्होंने दगर करी गई यह क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से शुरू होता है प्रकृति के लिए उपहार के रूप में वन महोत्सव। श्रोताओं वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य निधि का काम करते हैं। वन जहां एक तरफ हमें सुकून देते हैं दूसरी तरफ हमारी पर्यावरण पारिस्थितिकी इन सब में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव। तो इस बार वन महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसको लेकर के हमने बातचीत की है वन दरोगा विंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में कार्यरत प्रशांत चंद जी से। तो प्रशांत जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: तो अपने हमारे जो श्रोता आपको

0: सुन रहे हैं उनको अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए।
1: मेरा नाम शानचंद है, मैं सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग में बिनसर वन्य जीव विहार अंतर्गत वन दरोगा के पद पे कार्यरत हूँ।
0: जी,
1: बिनसर वन्य जीव विहार में कुल 3 सेक्शन और 7 बीट हैं। 3 सेक्शनों में जो सबसे बड़ा सेक्शन है कंगारछीना, वो मेरे पास है, और मुख्यालय वाला जो हमारा एक अनुभाग है वो कपड़खान अनुभाग नाम से है। इसके अलावा एक धौलचीना अनुभाग भी हमारे पास है। इनमें 7 बीटें आती हैं
0: जी।
1: और इस रेंज अंतर्गत कुल 4,707 हेक्टेयर में ये रेंज फैली हुई है।
0: तो इस समय जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं, तो वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? और वन विभाग चूंकि वनों से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण संतुलन में भी उसका काफी योगदान रहता है, तो आप कैसे देखते हैं वन महोत्सव को?
1: देखिए, वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष, जैसा कि आपने सभी को बताया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1950 में श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जी द्वारा की गई थी। इसका जो वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य होता है, ये वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देना होता है।
0: जी,
1: जिसके दौरान अधिक से अधिक पौधा लगाकर हरियाली बढ़ाने व प्रकृति संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जाए।
0: जी, तो ये तो वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नए वन तैयार हों, इसके लिए भी भूमिका तैयार करता है वन महोत्सव। तो इस समय वन महोत्सव के तहत क्या क्या कार्यक्रम आपके वहाँ हो रहे हैं?
1: देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो हमारे वहाँ अभी पौधे रोपण का कार्यक्रम किया जाता है बहुत बड़े स्तर पे।
0: जी,
1: अन्य जगहों पे जैसे कि ये विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, वन पंचायतें हो गई, और ग्राम पंचायतों में भी जो ग्रामीणों के सहभागिता द्वारा पौधारोपण किया जाता है, तथा इसके अलावा भी हम लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में जाके चित्रकलाएं के द्वारा या कुछ उनको भाषण द्वारा और उनके द्वारा कहीं कहीं पर हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाके ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई प्रतियोगिता कराएं जिसमें उनको जैसे निबंध लेखन होता है, जिसके द्वारा वो अगर बच्चे मतलब शुरू से ही ये जान लें कि प्रकृति को हम प्रकृति पर्यावरण के लिए ये जो हम वृक्षारोपण करते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, अगर वो शुरू से ही एक बच्चा अगर ये जान ले तो वो आगे जाके अपने से और 4 लोगों को सिखाएगा, जो जिसके जिसके कारण हमारा काम जो है वो और आगे बढ़ता चले जाएगा और पर्यावरण को जो जो नुकसान होते हैं जैसे कि आपका प्रदूषण होता है या प्रकृति का असंतुलन होता है, इस समस्याओं का निपटारण करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो हम जगह जगह लोगों को जाके एक तो पहले पौधारोपण कार्य कराते हैं और अन्य रैलियों द्वारा, गोष्ठियों द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है।
0: तो एक तरह से छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, समाज के लोगों के बीच में जागरूकता का काम किया जाता है और वो कई तरह से किया जाता है, भाषणों से, विभिन्न प्रतियोगिताओं से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी बिनसर सेंचुरी है, इस बिनसर सेंचुरी के अंदर किस किस प्रजाति के पौधे हैं और किस किस तरह के प्रजातियों के संरक्षण पर बिनसर सेंचुरी के अंदर काम किया जा रहा है?
1: देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ बांज की जो वैरायटियाँ हैं उन पे हम काम करते हैं। जैसे जो हमारी संरक्षित प्रजाति है यहाँ, एक बांज की जो हमारे धौलचीना सेक्शन में वहाँ पाई जाती है, जिसको लठवा बांज कहते हैं हम।
0: अच्छा।
1: वो काफ़ी विलुप्त प्रजाति है, एक वो बहुत कम जगह पाई जाती है, तो उसको सबसे पहले हम उसको संरक्षित करते हैं। नॉर्मल जो बांज होता है आपने सब जगह देखा ही होगा, वो तो हमारे वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला है।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा हमारे पास तिलौंज, कुछ जगहों पे खरसू और उटीस, अयार, ये सुराई, देवदार
0: अच्छा
1: जैसे अन्य जो टॉप वाले हमारे एरियाज हैं यहाँ पर फैले हुए हैं, ये मिक्स फॉरेस्ट के उसमें आते हैं। बाकी जो हमारा नीचे नीचे वाले इलाके हैं जहाँ जहाँ से हाइट कम रहती है, तो वहाँ हमारे पास चीड़ चीड़ काफ़ी फैला हुआ है। ये जो मैंने वृक्ष जो मिक्स प्रजाति वाले वृक्ष बताए, जैसे तिलौंज बांज, उतीस अयार, देवदार, सुरई, लठवा बांज, ये सब थोड़ा ऊपर वाले क्षेत्र में रहते हैं जहाँ विंसर के 0 पॉइंट के आसपास।
0: अच्छा
1: बाकी जो गांव के क्षेत्र हैं उनके आसपास जो है काफ़ी चीड़ का काफ़ी फैला हुआ है।
0: अच्छा मैं एक बात अपने श्रोताओं की तरफ से जानना चाहता हूँ कि चीड़ को लेकर के हमारे श्रोता भी कई बार इस बात को कहते हैं कि क्या चीड़ ग्रामीण समाजों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, या कि उसके स्थान पर मिश्रित वन उपयोगी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
1: देखिए, हर वृक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है जंगल के प्रति। अब जैसा कि आप सब लोग ये मानते हैं कि चीड़ एक ऐसी प्रजाति है जो जंगल को एक दुरुपयोग करती है या वो करती है, लेकिन ऐसा बहुत जगह नहीं देखा गया है। काफ़ी जगहों में चीड़ जो है ये अपनी जड़ों से ऐसी सॉइल मतलब मृदा को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, ताकि जब अभी हमारा ये जो बारिश का सीजन आया है तो इसमें मृदा को संरक्षित करता है। ये
0: यानी
1: अगर कहीं
0: भूकटाव को रोकता है।
1: भू कटाव को रोकता है।
0: अच्छा
1: काफ़ी पथरीली इलाकों पथरीली जगहों पे भी ये उग जाता है, जिस कारण जो ढीले पत्थर होते हैं वो रोड के किनारे गिरने का जो डर होता है उसमें भी ये भूस्खलन जो ये होते हैं इनमें रोक रोक रोकथाम करता है। ये जो जो इसकी छाल होती हैं इससे अगर ये जो जब गिरती हैं, जब ये पेड़ वो होते रहते हैं अपनी छाल गिराते रहते हैं और वो करते रहते हैं, ये मृदा को एक खाद उपयोग कराता है।
0: अच्छा
1: और इससे निकलने वाले जो लीसा होते हैं इससे काफ़ी लोगों का रोजगार भी टिका है, उनको भी रोजगार मिलता है और हमारे विभाग को भी इससे काफ़ी फायदा होता है।
0: मतलब कि व्यावसायिक रूप में काफी उपयोगी है ये, अगर
1: हाँ जी हाँ,
0: किसी
1: व्यावसायिक रूप में भी देखा जाए तो उपयोगी, और ये नेचर नेचर को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है
0: अच्छा
1: अपनी अपनी जड़ों से, अपने जो खाल होती है। अगर ये जैसे कहीं गिर भी जाता है वहाँ, जैसे सेंचुरी में तो ये अलाउड नहीं है कि ये पेड़ या पत्ता भी यहाँ से हिलता नहीं है, तो ये खाद के रूप में उपयोग में आता है फिर उसके बाद।
0: अच्छा इसका मतलब आपने जो अभी बात बताई कि सेंचुरी का जो संरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर से लकड़ी पत्ती कोई भी चीज बाहर नहीं ले जा सकती।
1: हाँ, लकड़ी पत्ती इत्यादि ये जो जो भी हमारा ये प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लीसा भी हम कह रहे हैं, तो हमारे वहाँ लीसा भी नहीं लगाया जाता है, ना ही लकड़ी यहाँ से जाती है, ना ना कोई ऐसी चीज़ जाती है, जो भी है वो यही संरक्षित रहता है
0: यानी कि जो
1: किसी।
0: वन उपज भी मिलती है वो वहीं संरक्षित ही रहती है।
1: हाँ जी, यहाँ से कोई ऐसे वन उपज बाहर नहीं जाए जाते, उनकी कोई निकासी नहीं होती।
0: तो एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब गर्मियों का सीजन आता है तो इस समय हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों में काफी आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो इसका जो एक स्थायी इलाज है, एक तो यह है कि हम उसका आग बुझाने का प्रयास करते हैं, गांव वालों को जागरूक करते हैं, लेकिन एक फॉरेस्ट के इतने पद पर आसीन होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं, इसका स्थायी समाधान क्या है?
1: देखिए, सबसे पहला स्थायी निवारण तो ये है कि लोग जागरूक रहें।
0: जी
1: मतलब हमने ये देखा गया है कि जो स्टडीज हुई है ये फायर के रिलेटेड, हमारी जो भी फायर गर्मियों के सीजन में, कि जितनी भी आग लगाई जाती है ज़्यादातर जो होती है वो मैन मेड होती है, यानी मनुष्य द्वारा ही,
0: मानव के द्वारा लगाई जाती है।
1: मानव द्वारा ही लगाई जाती है, नेचुरली बहुत कम होती है। जैसे लोग कहते हैं कि पत्थर के रगड़ने से चिंगारी हो गई और उससे आग भड़क गई, ऐसा बहुत 1-1/2% कहीं होता है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि मानव द्वारा ही आग का लगाना शुरू किया जाता है। तो अगर सबसे पहला उपाय यही है कि जितना जागरूक लोग रहें। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि जैसे अभी आग का सीजन आता है तो हम अगर पिरुल उरुल घास आस के लिए अगर हम इसको आग लगा देंगे तो हमें नई घास मिलेगी, ऐसा भी देखे हर जगह देखा नहीं गया है कि इससे नई घास उगी जाती है या चारा पत्ती के लिए ज़्यादा घास उगी जाती है। लोगों के मन में कुछ कुछ ऐसी वो हैं, पुरानी बातें, पुरानी भावनाएं हैं कि जिनको हमने तोड़ना है, और
0: ऐसे
1: हमारे
0: करने से उनको लगता है कि घास

0: जाएगी।
1: हाँ, ऐसे करने से जितना जितना आपको फायदा होना होता है उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब जो गर्मियों का टाइम होता है वो हमारा सबसे ज्यादा बर्डिंग का सीजन होता है हमारे वहाँ पर, और इसी गर्मी के सीजन में जो चिड़ियाएं होती हैं ये बच्चे देने के लिए इन जंगलों के पास आती हैं। अब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई कई जानवरों करने का टाइम होता है वो होता है। अब जंगल में आग लगाने से एक तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मानव ये वन्य जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इसके कारण जो गर्मियों में आप बहुत ज्यादा समस्याएं देख रहे होंगे पानी से जो रिलेटेड होती है, कि जल स्रोत जो हमारे होते हैं, जो नौले गदेरे होते हैं, ये सूख जाते हैं। इसके लिए हम देखिए जब जनवरी से ही हम इसको शुरुआत कर देते हैं अपनी जन जागरूकता कार्यक्रम की, जगह जगह गाँव में जाके हम गोष्ठियाँ कराते हैं, और जब जब इनकी खुली बैठकें होती हैं वहाँ जाके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जंगल के प्रति एक संवेदनशील रूप से सोचिए, और आग लगाने वाले जो ये ऐसे व्यक्ति हैं उनको कृपया इनको इन पे ध्यान दीजिए, और इनकी संख्याएं को कम करने का हमारा पूरा प्रयोग रहता है।
0: तो एक तरह से यह है कि अगर जनता और समाज के लोग जागरूक होंगे तो इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी।
1: हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है इसमें, कि अगर जनता और लोग ऐसे जो कार्य करते हैं अगर ये जागरूक हुए तो ये काम बहुत स्तर पे कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक अपील जो पहले से दर्ज की गई थी कि फायर लाइन को बढ़ाया जाए और उसके उसको दोबारा से रीजनरेट करा जाए, तो इस पे अभी काम चल रहा है। हाँ, जो हमारे पास पहले से फायर लाइन है इनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए, ताकि जैसे हम कभी कभी हमारे पास ये होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ना जाए करके, पहले से ऐसा होता था कि फायर लाइन बनाई जाती थी 50 फुटा 100 फुटा, तो उनको अब दोबारा रीजनरेट करने की बात हुई है कि ये आग के निपटारण के लिए बहुत कारगर योजना है, मतलब वन विभाग द्वारा पहले से की जाती थी।
0: तो वन महोत्सव में हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, चलते चलते आप उनको क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे?
1: देखिए वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें जो वन्य जीव हैं और हम हैं, जो जो हमें वनों से पर्याप्त धन मिलता है, जैसे औषधियाँ हैं, कुछ जल है, शुद्ध वायु है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम मतलब अमूल्य धन है हमारे लिए, और ये हम कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम आज से ये प्रण लें कि हम एक एक दो पेड़, जितने पेड़ हमसे हो सके हम ये लगाएं, और एक काफ़ी विकसित जंगल बनाने की कोशिश करें, तो वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत एक हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और इससे एक हमारी जो हरियाली बढ़ने में और हमारे जल स्रोत बढ़ने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा हमारा। मेन एक चीज़ में बात बोलना चाहूँगा कि हम सिर्फ वृक्ष लगाने पे नहीं, उसको कैसे उसको एक पौधे से एक वृक्ष बनाने तक उसकी जो देखभाल की जाती है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। दरअसल हम सब लोग ऐसा करते हैं कि एक वृक्ष लगा देते हैं कि उसकी देखभाल करते नहीं हैं, फिर आने वाले टाइम पे उसको कभी कोई या तो पशु खा जाते हैं या कुछ उस पर ओलावृष्टि होने के कारण वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे मेन जो हमने करना है वृक्षारोपण तो करना ही है, साथ साथ उसका जो उसको उसकी देखभाल है उस पर ज़्यादा अधिक ध्यान देते हैं,
0: मतलब
1: कि
0: उसको
1: कैसे
0: एक
1: वो एक पौधा एक वृक्ष में
0: बदल सके।
1: बदल सके।
0: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमारी प्रकृति अपना उपहार हमें देता रहे और सभी लोगों का जीवन भी सुखी हो। और वन महोत्सव के अवसर पर आपने ये जानकारी दी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: तो श्रोताला आप लोग सुन लाग जा वन महोत्सव पर यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जनदगा हम भेंट करना लाग जी ऊंची बिनसर वन्य जीव विहार अलमोड़ में कार्यरत बंदरोगा प्रशांत चंद, और इन्हें तक भेंट करना लाग जी रमाशंकर नेलवाल।

श्रोता यह गीत आपको श्लोक सुनना चाहिए। गीत का आवाज लाक्षी दीवान कनवाल और शंकर उप्रेती। दगड़ियों जस प्रकृति में जंगों अपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान निभानी, वैसे हमारी भाषा और संस्कृतिक संरक्षण में हमारे लोकगीत ला महत्वपूर्ण स्थान छ। दगड़ियों हमारी भाषा छो, संस्कृति छो, रहन सहन छो, ये सब चीज़ों को जब हमारे लोकगीत अभिव्यक्त करनी यस भाषा में यस प्रकारक घोल लगाबे हमको सुनानी, तो कही जाए कि मनखिक मनक जो उद्गार होनी वो लोकगीतों में जब अभिव्यक्त होनी तो एक नई प्रकार का उमंग मनखिक मन में यह उल्लास पैदा हों कि मगर कशिक समाज में रोण छो, लोगों दगा व्यवहार करोण छो, और कही ले जाए कि छोट छोट बात छोट छोट शब्द जो छे उनमें बड़ी भारी ताकत है, उनमें बहुत ठुल शक्ति है, और वही ठुल शक्ति जो छे वो मनखिक जीवन का बांध पर धरी। तो कही जाए कि लोकगीत हमको एक दूसरे देखो जुड़े पर धरनी बांधी पर धरनी। यह कह लीजिए दगड़ी, देखो आजक आधुनिक युग में ले कथक अगर कौतिक लागी रहो मैल लागी रहनी तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की मांग है कि लोकगीत सुनाओ। तो यानी कि लोकक भीतर जो संस्कृति है वो कतुबल ताकतवर है।

अरे भैंसी पढ़ो खाल समधनी, यो भैंसी पढ़ो खाल, अरे धक हबे ने तू धक दी जानी, ओ हीरा समधनी।

उता युचि बिमला बोरा रुना दगड़ी जनस्वर में यो गीत आप लोग सुन ला छा। अब यक दगड़ा आजक उत्तरायण कार्यक्रम इतिक संपन्न हो, भो कार्यक्रम में फिर भेट भेल, एल आज्ञा दियो, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ देर बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

0: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मदरसा बोर्ड के स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ वी मुरुगेशन ने पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्रों जौलजीबी, गुंजी और धारचूला में पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश में सभी जिलों के 66 स्थानों पर कल मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मदरसा बोर्ड के स्थान पर आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तकें भी भेंट की और कहा कि गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक शिक्षा की दिशा में ये पहल विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
3: आज की शुरुआत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान अवसर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने आज कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मंडल आयुक्त उन मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करें जहां ऐसे मतदाताओं की संख्या अधिक है जिन तक मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज नहीं पहुंच सके हैं। उन्होंने बूथ स्तर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची में शामिल प्रत्येक मामले पर आवश्यक टिप्पणी दर्ज कर बूथ जागरूकता ग्रुप के सदस्यों के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित किए जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नोटिस प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक असुविधा न हो। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर तथा मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविरों का रोस्टर तैयार कर दावे और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: पिछले 9 वर्षों में वस्तु और सेवा कर GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुआ था। इस अवसर पर आज देहरादून में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान GST की उपलब्धियों, कर सुधारों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय GST देहरादून के आयुक्त डॉ अशोक कुमार पांडे ने कहा कि GST ने

0: कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाया है, जिससे व्यापार करने में सुगमता बढ़ी है और राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
1: मैं जीएसटी के 9 साल पूरे होने को इस तरह से देखता हूँ कि एक जो कर सुधार था, एक रिफॉर्म था, जिसमें कि हमने मल्टीपल टैक्स रिजीम को, जिसमें कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट होते थे, उनको एक जगह समाहित करके और एक राष्ट्र एक कर की जिस स्वप्न को शुरू किया था 2017 में, आज 9 साल आते आते लगता है कि एक बड़ी लंबी यात्रा हुई है जिसमें सुगमता की ओर हम गए हैं। करदाता भी इसको सुगम पाते हैं, उपभोक्ताओं का भी इसमें लाभ हुआ है और करदाताओं का भी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज हुई है इस यात्रा में कि हमने डिजिटल ऑनलाइन तरह की व्यवस्थाओं को एक आधार दिया है।
0: अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने आज पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्रों जौलजीबी, गुंजी और धारचूला में पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। श्री मुरुगेशन ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने, जन सहभागिता बढ़ाने और संवेदनशील पुलिसिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश में कल राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी जिलों के 66 स्थानों पर ये मॉक अभ्यास किया जाएगा, जिनमें अधिकांश स्थान पहली बार शामिल किए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना, उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारी को परखना है।
3: 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं। कुल 66 प्लेसेस पे हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि हमने इस बार उन प्लेसेस को चुना है जहां पर आमतौर पे मॉक ड्रिल नहीं होती थी। बार बार जहां मॉक ड्रिल होती थी उसको हटा दिया है हमने, ताकि नए स्थान पे जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञात रहे। मॉक ड्रिल में हमने यह भी प्रयास किया है कि जो ऑब्जर्वर हमारे हैं वो डीओसी में रहेंगे, एक एक ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर, उसके साथ में जहां पे घटनास्थल है वहां एक एक ऑब्जर्वर रहेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के, आर्मी के, सीएपीएफ के, एसएसबी आदि के लोग रहेंगे।
0: राजधानी देहरादून सहित आज राज्य के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। देहरादून जिले में हुई बारिश और संभावित आपदा की परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आज आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आपदा से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और उप जिलाधिकारियों के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संभावित आपदा के दृष्टिगत जल भराव और नदी किनारे वाले ऐसे 29 क्षेत्र नगर निगम ने चिन्हित किए हैं, जिनकी प्रशासन निगरानी कर रहा है।
4: जैसे जो हमारे कोर कंसर्न है, वाटर लॉगिंग एरिया है, या अगर बात करें कि लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो 29 ऐसे लोकेशंस नगर निगम ने आइडेंटिफाई किए और लगभग 3,700 के आसपास ऐसे वल्नरेबल फैमिलीज हैं और 900 के आसपास हाउस होल्ड हैं। तो टोटल उसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमराज या पीटीजेड कैमराज के माध्यम से पास की चौकी पे उसका फीड रहेगा, और किसी भी आपदा जैसी स्थिति में इमीडिएटली हम अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के मल्टीपल डायरेक्शन जो मेरे द्वारा पूर्व में भी दिए गए, उनकी कंप्लायंस को भी इंश्योर किया गया है, और जो वाटर लॉगिंग एरिया है वहाँ पे हमारी टीम्स ने काम किया आज भी।
0: उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी बृजेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल की ओर से आज जारी निलंबन आदेश के अनुसार बृजेंद्र पांडे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। मामले की जांच के लिए परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रदेश में मदरसा बोर्ड के स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ वी मुरुगेशन ने पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्रों जौलजीबी, गुंजी और धारचूला में पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश में सभी जिलों के 66 स्थानों पर कल मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब समय हो चुका है भक्ति संगीत का। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं अनूप तिलोटर के गाए इस भक्ति वंदन के साथ।

भक्ति संगीत कार्यक्रम के समापन में एक बार पुनः ये सुनते हैं अनूप जलोटा का गाया ये भजन।

अनूप जलोटा के गाए इसी भजन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। शाम के 6:50 होने को है। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून पटाया गढ़ोही में प्रादेशिक समाचारों का दगड़म, मी दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आज बटे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, नई व्यवस्था का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में पारदर्शी और समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण च। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाला। मानसून जनित आपदाओं से निपटने को तैयारियों थे परखण खूणों। प्रदेश के 66 स्थानों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करे जाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं के आरोप में देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे थे झटझटाक प्रभाव से निलंबित करे गए। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करी। अरब समाचार विस्तार से। राज्य में आज बटे अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ू बदलाव लागू होलू। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को स्थापना कैरियाल, जबकि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड थे भंग करे गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान मान्यता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में बोली कि नई व्यवस्था का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों थे गुणवत्तापूर्ण आधुनिक और समान अवसरों वाली शिक्षा उपलब्ध कराण च। उन्होंने बोली कि सरकारक संकल्प च कि प्रत्येक बच्चा थे अच्छा संस्कार और बेहतर शिक्षा मिलू, जैसे कि परिवार समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सक।
1: विकल्प रही संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान अवसर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान।
0: मुख्यमंत्री ने बोली कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को पारदर्शी और एक समान व्यवस्था लागू करे गया। उन्होंने बोली कि आधुनिक शिक्षा और समान अवसरों से सभी वर्गों के बच्चों तय अग्नि बढ़ने का अवसर मिललु। उन्होंने साफ कहरी कि प्राधिकरण की स्थापना के भी समुदाय के धार्मिक पहचान परंपराओं या अधिकारों तय प्रभावित करना खुण नहीं करे गया।
1: मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान परंपराओं या अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। हम चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहे और विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, भाषा कौशल विकास तथा आधुनिक तकनीकों में भी वो पूरी तरह से दक्ष बने। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के ऐसे मंदिर स्थापित हों जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, साथ ही बच्चों को आधुनिक वैज्ञानिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
0: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमन

0: आज कुमाऊं और गढ़वाल मंडलक मंडलायुक्तों के दगड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यम से अभियानक समीक्षा कैरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दे कि मंडलायुक्त उन मतदाता केंद्रों को स्थल निरीक्षण कैरा और इन मतदाताओं की संख्या अधिक च जो तक मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज नहीं पहुंच सकें उन बूथ स्तर अधिकारियों से निर्देश दीन कि अनुपस्थित स्थानांतरित और मृत मतदाताओं को सूची में शामिल प्रत्येक मामला पर आवश्यक टिप्पणी दर्ज करी बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों को हस्ताक्षर भी सुनिश्चित कर जाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोली कि 14 जुलाई खून प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद दावा और आपत्तियों को निस्तारण खून विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे जाली। उन्होंने बोली कि मतदाताओं थे कै भी प्रकार का असुविधा नहीं हो। यहाँ खून पर्वतीय क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर और मैदानी क्षेत्रों में तहसील नगर निगम नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करे जाओ। प्रदेश में मानसून से होने वाली आपदाओं से निपटने की तैयारियों थे प्रखंड खून भू राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करे जाली। सभी 13 जिलों को 66 स्थानों पर यू मॉक अभ्यास करे जालो जहां ज्यादा स्थान पहली बार शामिल करे गए। मुख्यमंत्री स्वयं मॉक ड्रिल का निरीक्षण कारला। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करण उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करण और वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारी थे प्रखंड च। उन बोली कि यह अभ्यास के माध्यम से विभिन्न विभागों को तत्परता संसाधनों को उपलब्धता और झटझटाक प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करे जालो। दगड़म संभावित कर्मियों और चुनौतियों को पहचान कैरी वक्त रेन उनको समाधान करे जालो जैसे वास्तविक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी और समन्वित ढंग से संचालित करे जाए साक।
1: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खोड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं के आरोपों के बाद देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी बृजेंद्र पांडे थे झटझटाक प्रभाव से निलंबित करे गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर रियाल। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरा सिंह गर्बियाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि का आवंटन मार्ग कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और अन्य सूचनाओं के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गिन। मामला की जांच खून परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी थे जांच अधिकारी नियुक्त करे गया। राज्य के कई हिस्सों में 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करे गया। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक आकाशीय बिजली वर्षा के तीव्र से ज्यादा तीव्र दौर और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी दी। ये बीच राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मध्यम से तेज बारिश हुई। राज्य के कई स्थानों में ग्रामीण संपर्क मार्ग भी बाधित हुए जहां बेखुंदा तक अधिकतर सड़कों थे यातायात खून सुचारू कर गया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बने के रखण। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बोली कि जो क्षेत्र में भारी बारिश का आशंका वक्त SMS के माध्यम से अलर्ट भेजे जाना छन।
2: 2 तारीख के लिए बागेश्वर नैनीताल पौड़ी टिहरी और देहरादून के लिए अलर्ट है और 3 तारीख के लिए नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके क्षेत्र अधिकार में जो लोग रहते हैं उनको सावधान करें। इस चीज के लिए उनके द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं, सूचना की जा रही है विभिन्न माध्यमों से और हमारे यहाँ से भी सचेत के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं और SMS भी हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में अतिवृष्टि की संभावना है वह मैसेज भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा सुचारू है, चारधाम यात्रा मार्ग बुरी तरह से खुले हुए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
0: चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये साल पर्यटकों को रिकॉर्ड आमद दर्ज करे गया। घाटी खुलने के बाद से एक माह के भीतर 7,294 पर्यटक यहाँ पहुंचे जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक छन।
3: पिछला एक महीना में 7,260 भारतीय और 34 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी पहुँचे। प्रवेश शुल्क से लगभग 11,06,000 रुपयों को राजस्व प्राप्त हुए। पिछले साल जून महीना में 3,898 पर्यटक ऐछा और लगभग 7,80,000 रुपये को राजस्व मिली छो। वन विभाग के अनुसार यूं दिनों घाटी में कई दुर्लभ हिमालयी फूलों का खिलन से प्राकृतिक सौंदर्य अपना चरम की ओर बढ़नु। पार्क प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा, जंगली जानवरों का संरक्षण और पर्यावरण

0: पर्यावरण संरक्षण खूनी लगातार निगरानी करनु छे। प्रवेश द्वार पर पर्यटकों को प्लास्टिक मुक्त यात्रा और पार्क का नियमों की जानकारी भी दिए जानी छे। वन विभाग को बोलन छे कि मानसून का दौरान जुलाई और अगस्त में फूलों की घाटी अपनी पूरी रंगत में होंगी। इनमा आने वाला दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना छे। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविन्द्र सिंह।
1: चंपावत जिले के लोहगाट स्थित फर्नील ट्रेचिंग मैदान में लंबा समय से जुड़िया कचरे के निस्तारण कार्य के जिलाधिकारी मनीष कुमार निरीक्षण कैरी उन्होंने कार्यों को प्रगति का जायजा लेके अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण का निर्देश दे। जिलाधिकारी ने बोली कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार लीगेसी वेस्ट के शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करे जालू उन ट्रामल मशीन के माध्यम से कचरे का निस्तारण प्रक्रिया को निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाना और ट्रेंचिंग ग्राउंड थे मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दे। आखिर में मुख्य समाचार एक दाब फिर से। प्रदेश में आज बटे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली नई व्यवस्था का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना च। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची के परिवीक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाला। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियां थे प्रखंड खूण प्रदेश के 66 स्थानों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करे जाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं का आरोप देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी बृजेंद्र पांडे थे झटझटाक प्रभाव से निलंबित करे गया और मौसम विभाग ने राज्य कई सुम 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करी। यहाँ का दगड़म गढ़ प्रादेशिक समाचारों के अंक समाप्त हों। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के संतोष कुमार कोटलिक नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से लाफल जिगली भी रह रहे हैं। कुछ बातचीत, कुछ जानकारी और दगड़ पर कुछ कुमाऊनी लोकगीत। दगड़े कार्यक्रम की शुरुआत करनो कुछ बातचीत हो दगड़ और बात करनो हमारे किसान भाई बहन धानक खेत पर में। दगड़े हमारे पर्वतीय क्षेत्र धानक खेती की अगर हम बात करूँ तो यहाँ चैतक महीने बटी धानक बुआई या खेतों की तैयारी शुरू है जी, और जो कि सोने में तला चली कि लेकिन हम देख लूँ कि चैती जो धान हूँ वो उपराऊँ धान हूँ और उग जो छू सिंचाई कर बेर वो फसल बोई जा। ये के अलावा अगर आजकल धानक हम बात करूँ तो आजकल रुपाई वाल जो धान छन वो उनर रुपाई होने लग रहे। बोले धानक कोई ले खेती अगर हम करूँ तो सब है पहली खेती भली की तैयारी हम लोग उनका कल्याण से एक बटी दी जुताइयों में कल्याण से नहीं। ये एक बात अगर उमें जो ले खरपतवार छू वीक नियंत्रण उनको हम हटा देना चाहें। वीक अलावा खाद डाल बेर भली के धानक बुआई हमको करण चाहें। अगर हम रुपाई वाल धानों की बात करूँ तो रुपाई वाल धानों में पहली खेत के भिजान पड़ूँ उगो पुरपाणी उमें छोड़ पड़ूँ। वीक बाद उमें जुताई करण पड़ी और खाद डाल बेर फिर माट के समतल कर बेर फिर उमें रुपाई करीजें। थोड़ी धानक खेती में बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगरूँ तो बखत बखत पर वीक निवारण हम लोग उनका करना चाहिए और ध्यान धरना चाहिए कि कोई प्रकार का कीड़ या रोग फसलों में न लागू और बखत बखत पर निराई करते

हुए 5-6 महीने में हमारे धानक फसल तैयार है जी। जब धानक फसल तैयार है गई तो वो आरामल काट वीर विक मड़ाई कर वीर फिर बीज के बलि बांस सुख वीर विक भंडारण करण छे। तो दोड़ियों ये प्रकार आप अगर खेत कर ला तो बहुत भल उपज आप लोग ने खेली और बहुत भल फायदा आप लोगों का होल। कार्यक्रम ना मैं आघिन लापू लोगों दगा बातचीत करूँ। आओ कार्यक्रम में सुन लू महिपाल सिंह मेहता गाई यो लोक गीत।

0: दगड़ियों ला हम सुनला रची महिपाल सिंह मेहता गाई यो लोकगीत। और अब कार्यक्रम के बड़ों आघिन और सुननू अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर विज्ञान शिक्षक श्री महिपाल सिंह बोरा दगड़ करी गई यो क्षेत्र संकलित बातचीत।
1: दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई मनुष्य जो है बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने जीवन में आराम या फिर सुख सुविधाओं का अर्जन करता है। और जहां हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता है तो वहीं हम देखते हैं कहीं ना कहीं वह अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो रहा है। दोस्तों, अगर बात करें हमारे स्वास्थ्य की तो उसमें हमारे खान पान का विशेष महत्व रहता है और खान पान में हम क्या खा रहे हैं इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा हम देखते हैं कि फल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि अगर हम लोग फलों का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी जो है वो दूर होती है और ये हमें काफी बीमारियों से बचाते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान शिक्षक श्री महिपाल सिंह बोरा जी से। बोरा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिपाल सिंह बोरा जी एक विज्ञान शिक्षक हैं। आज हम लोग मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस क्या है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस एक मुहिम है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने इस दिन को विशेष महत्व दिया है ताकि जो हमारे श्रोतागण है या सभी जो लोग हैं हम अपने खान पान में एक विशेष महत्व दें और फल और सब्जियों को, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर बने क्योंकि फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारियां दूर रहती हैं और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है।
1: बोरा जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई और आगे आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है, देखिए आजकल के समय में हमारी जीवन शैली काफी बदल गई है। हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और पैकेज फूड पर निर्भर हो गए हैं जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है यह हमें याद दिलाने का एक अवसर है कि हमारी सेहत के लिए फल कितनी आवश्यक है, कितने जरूरी है। फल पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं और इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर को लगेगा। इसलिए ये जागरूकता अभियान हम कह सकते हैं कि जिससे आम आदमी को फल और सब्जियों का महत्व पता चल सके।
1: जैसे कि हम देखते हैं कि इतनी महंगाई है और इतनी महंगाई के समय में हर किसी के लिए नियमित रूप से फल खाना संभव नहीं है, तो इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने फलों को अपने दैनिक भोजन में शामिल कर सकते हैं।
2: जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, फल का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा बहुत अच्छे ही फल खाएं, महंगे फल खाएं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, जो हमारे आसपास के फल होते हैं, उन फलों को हम अपने इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आजकल सीजनल फल हैं, आजकल अंगूर है, अमरूद है, पपीता है, ये आसानी से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे अच्छे फल खाएं। इसके अलावा जो भी मौसमी फल हो रहे हैं हम उनको ज़्यादा वरीयता दें। ऐसा नहीं कि हम महंगे फलों के पीछे भाग रहे हैं और जो हमारे लोकल फल हैं उनको हम महत्व न दें। तो ये हमको आसानी से मिल भी जाते हैं और सस्ते भी होते हैं जिससे सारे श्रोतागण हमारे और सभी मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोकल फॉर वोकल जो है उसको हम महत्व दें और जो भी हमारे आसपास फल अच्छे दामों में, कम दामों में उपलब्ध हैं हम उनको खाएं और स्वस्थ रहें।
1: पूरा जी, एक बात हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि कौन से फल से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है।
2: जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जैसे अगर हम बात करें हमारे शरीर की आवश्यकता की तो हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है, जो हमारे छोटी मोटी बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे हमको बचाती है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है, जो WHO की गाइडलाइन भी अगर आप देखेंगे

0: भी कहते हैं चार पांच प्रकार के अलग अलग कलर के फल खाना चाहिए, अलग अलग रंग के फल हमें खाना चाहिए, जिससे क्या होता है हमको अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिलती हैं। सबसे कॉमन है जो खट्टे फल होते हैं वो हमको विटामिन सी बहुत देते हैं, और जो मीठे फल हैं जैसे पपीता है जो हमारे पेट के लिए अच्छा रहता है, विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है, गाजर है जो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता भी है, ये भी हमको विटामिन ई अच्छा एक अच्छा स्रोत कह सकते हैं जो आंखों के लिए हमारे काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा जैसे आजकल गर्मी का सीजन है तो हम अपने शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए मौसमी फल हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, और इसके अलावा खीरा एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है जिसे हम अगर अपने डाइट में इंक्लूड करें तो हमको ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। आगे आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, क्या स्थानीय जो हमारे फल होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय फलों में भी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं?
0: हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारे स्थानीय फल हैं यही हम कह सकते हैं ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं, ये ज़्यादा हमारे सेहत के लिए बेहतर होते हैं। जैसे अगर आपको एक उदाहरण दूँ, सेब का उदाहरण दूँ, जो सेब आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, वैसे ये हर मौसम में मिलने वाला फल भी है, तो जो फल हमारे पास कश्मीर से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, तो उसे यहाँ तक आने में कुछ टाइम हो जाता है जिससे उसके पोषक तत्वों में कुछ कमी आ सकती है। तो अगर इसके जगह पर जैसे हमारे अगर आसपास अभी देखो मौसमी, खुमानी, आलू, इनका भी सीजन आ रहा है, अभी जस्ट हमारे काफल का सीजन गया हुआ है, काफल फल अभी तक बाजार में उपलब्ध था, तो ये प्रचुर मात्रा में इनमें पोषक तत्व तो होते हैं। और जैसे मौसमी है, और हम देखते हैं अभी हमारे यहाँ एक लोकल फल होता है नाशपाती, नेहल के नाम से भी बाजार में आता है, वो भी अपने आप में एक पौष्टिक फल माना जाता है। और आम कुमाऊँ में तो, कुमाऊँ उत्तराखंड में तो आम और लीची ये तो इसके लिए तो प्रसिद्ध है ही हमारा उत्तराखंड, तो इन फलों को हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और ये प्रचुर मात्रा में हमको अच्छे विटामिन और पोषक तत्व देते हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं अगर वो बाजार के फल नहीं खरीद पा रहे हैं तो अपने स्थानीय फल है उनको खाकर वो अपने शरीर में जो भी पोषक तत्व की कमी उसको दूर कर सकते हैं। आगे आप हमें ये बताइए कि फल खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए?
0: फल खाने का सही तरीका वैसे तो हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अगर हम फल को खाना खाने से पहले खाएं, खाने के साथ न खाएं, क्योंकि अगर हम फल से ही पेट भर लेंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि खाना भी खाना जरूरी है। हम रात को ज़्यादा मीठे फलों का सेवन न करें, जैसे आम है उसे ज़्यादा खाना खाने से, ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से बचना चाहिए, और सुबह के टाइम में इनको खाएं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकें। और जो लोग दैनिक दिनचर्या वाले जो ऑफिस को जाते हैं वो अपने साथ एक दो फल ले जा सकते हैं, बीच में कभी भी लंच के, लंच समय से पहले या फिर लंच के बाद, अगर एक दो घंटे के बाद या एक दो घंटे के पहले एक दो अगर फल अपने डाइट में इंक्लूड कर लें तो सबसे अच्छा समय है।
1: हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि घरों में फलों को काट कर रख दिया जाता है, तो फलों को काट कर रख कर खाना सही है या फिर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता
0: है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये सबके घरों में होता है, क्योंकि हम फलों को काटते हैं और आजकल छोटे परिवार हैं तो हम एक बार पूरे फल नहीं खा पाते हैं। जैसे अगर खरबूज तरबूज की बात करें तो अगर हम इनको फ्रिज में रखने की बात करें तो कुछ घंटे के लिए हम उनको रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक न रखें जिससे उनकी पौष्टिकता में कमी आती है। अगर हम कभी भी अगर हम फलों को अगर हम काट कर कुछ समय के लिए रख रहे हैं तो उनको जरूर ढककर रखना चाहिए जिससे उनमें कोई भी कीड़े मकोड़े न लग सके।
1: बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। हम देखते हैं कई बार मौसमी फल जो होते हैं, जैसे कि अगर ठंडे के मौसम की बात करें तो उस समय कई बार ये होता है कि ठंडा है और अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार या ठंड लगी हुई है, क्या उसको फल खाने चाहिए?
0: हाँ, क्योंकि परहेज जिसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि हमको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही फलों को खाना चाहिए, लेकिन जो मौसमी फल हैं प्रकृति के हिसाब से उगते हैं और उसी समय मौसम की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे गर्मी में तरबूज खरबूजा शरीर को ठंड देते हैं, वहीं सर्दी में संतरा अमरूद इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मौसमी फल सस्ते ज़्यादा पोषक होते हैं क्योंकि इनमें लंबे समय तक स्टोर नहीं करना पड़ता है। जाने के समय में जैसे यह पहाड़ों में ठंड भी पड़ती ही है, फलों को कुछ देर हम धूप में रखकर इनको खा सकते हैं, सुबह सुबह न खाएं क्योंकि सुबह ठंडक ज़्यादा रहती है, तो हम कुछ देर इनको धूप में रखने के बाद दिन में 11-12 बजे जब अच्छी धूप हो जाती है उस वक्त खा सकते हैं। हाँ, अगर किसी को सर्दी जुकाम और कुछ अन्य खांसी या फिर अन्य समस्या है तो उसके हिसाब से हम फलों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में ठंडे और खट्टे फलों को सेवन नहीं

0: करना चाहिए।
1: कई बार हम देखते हैं कि स्कूली बच्चों के टिफिन में कटे हुए फल आते हैं, और आप तो व्यवसाय से भी शिक्षक हैं, आपके सामने तो ये बातें आती रहती होंगी, तो क्या स्कूली टिफिन में कटे हुए फल रखना सही है?
0: हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि मैं भी स्कूल में देखता हूँ कि बच्चे कटे हुए फल लाते हैं, तो इसका एक ये हो सकता है कि इसका तरीका फल को काट कर ना रखकर उनको अलग से रखें, जैसे कि बच्चे के लिए सेब रख लें या फिर छोटा दाना सेब का रख लें, या जैसे मौसमी फल आजकल आलू हो रहे हैं तो ये फल रख लें। कटे हुए फल अगर रख रहे हैं तो उनको अच्छे से टिफिन में अलग से पैक कर कर रखें, क्योंकि ये कटे हुए फल रखना भी एक अच्छी आदत हो सकती है। बच्चे बिल्कुल फल न खाएं, इससे अच्छा है कि कटे हुए फल खाएं, खुले में न रखें, उनको अच्छे से टिफिन में पैक करके रखें, जिससे उसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना हो।
1: कल हम देखते हैं कि जैसे बच्चे फास्ट फूड बहुत खाना पसंद करते हैं और फलों को खाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसका क्या सही तरीका हो सकता है कि हम बच्चों को फल खाने के लिए उत्प्रेरित करें?
0: इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि बच्चों को प्रेरित करें और फल और सब्जी को खाने से खाने के बारे में उनको बताएं, और अगर बच्चा बीच से फास्ट फूड की जिद करता है तो जैसे हम उन्हें उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इसका कि हम घर में अगर पिज्जा बना रहे हैं तो उसमें सब्जियां डालें। ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जिनमें सब्जी और फलों की अच्छी मात्रा होती है, जैसे हम कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं जिसमें बच्चे को एक अलग टेस्ट मिलेगा, फास्ट फूड का स्वाद भी मिल जाए और उसकी रुचि फल और सब्जी में भी बने रहे।
1: बोरा जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अंत में हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सुनने वाले श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि दिन में कम से कम एक फल जरूर खाएं, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें हमें लंबी समय तक हमें सुरक्षित रखती हैं।
1: महिपाल सिंह बोरा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और निश्चित रूप से आपकी दी हुई जानकारी से हमारे श्रोताओं को कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा उनको मिलेगी। आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: दौड़ीलाम सुनला रची अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर विज्ञान शिक्षक श्री महिपाल सिंह बोरा जी द्वारा करी गई और क्षेत्र संकलित बातचीत, और आप कार्यक्रम में आगे सुन लू शंकर उप्रेती और दीवान कनवा लग गई ये लोकगीत।

बड़े हम सुन लग रहा छी शंकर उप्रेती और दीवान सिंह कनवाल गाई यो लोक गीत। दगड़ियों हम हमार पर्वतीय क्षेत्र किसानों खेती के बारे में बात करने लग रही। अगर हमार पर्वतीय क्षेत्र किसान अपन उपज बढ़ाना चाहनी तो अपन खेतों में हमेशा जैविक खाद का प्रयोग उन्होंने करना चाहिए कि लेकिन जैविक खाद हमार खेतक उर्वरा शक्ति के बढ़ाई धरूँ और उमें जो पोषक तत्व हनी मट में वो प्रचुर मात्रा में बढ़ाई रूँ उन्हें बढ़ोतरी करूँ जैल की हमार किसान भाई बहनक उपज भल ही और उन्हें भी फैद हूँ। एक विपरीत अगर रासायनिक खादक हमार किसान भाई बहनी अपने खेतन में प्रयोग करला तो उन्हें माटक स्वास्थ्य खराब हो जा अर्थात उनमें पोषक तत्वों कमी है जी। जैल की खेतों में जो उर्वरा शक्ति छो कम ही अनाज उग नहीं सकन और हमार किसान भाई बहनी मेहनत करनी लेकिन मेहनतक अनुरूप उनर उपज नहीं। तो ये लीजिए हमार जो किसान भाई बहन छन उन्हें हमेशा अपने खेतन में जैविक खाद प्रयोग करन छे। जैविक खाद आप अपने घर में ले बने सकता जैसे कि हमार किसान भाई बहनी गोर बाछ तो पालनी तो गोर बाछ अगर पालन लग रही तो जो गोबर खाद छो उगे गड्ढ में डाल बेर उग भली बहाकल सड़े बेर जैविक खाद आप तैयार कर सकता। तो दगड़ियों आगिन आप लोगों का बातचीत करो और कार्यक्रम में अब बखत हगो आप लोगों तक विदा होना करना। तो ये कदगढ़ संतोष कुमार कोटली के आजक ग्राम जगत कार्यक्रम बटीक अनुमति दियो। नमस्कार।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने को है। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नोकडगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आज बैठे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को नई व्यवस्था का उद्देश्य सपे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी और समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण छू। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियानक भीतर मतदाता सूची परिवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाल। मानसून द्वारा होनवाल आपदाओं थे निपटन की तैयारी पर रखना लीजिए प्रदेशक 66 जागों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करी जाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं के आरोप में देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे के झट प्रभावल निलंबित करी गयो। और मौसम विभाग राज्य कई जागों में 3 जुलाई जाने मूसलाधार दुख चेतावनी जारी करी। और अब समाचार विस्तारल। राज्य में आज बैठे अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लागू है गयो। प्रदेश सरकार उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना कर हाली, जबकि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के भंग कर हालो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था मान्यता प्रमाण पत्र वितरित कर बेर को कि नई व्यवस्था का उद्देश्य समाजक सपे वर्गों के नांतिनों के गुणवत्तापूर्व आधुनिक और समान अवसरवा शिक्षा उपलब्ध करोड़ छू। उन नलको की सरकारक संकल्प छू कि हर नांतिन के भला संस्कार भल शिक्षा मिलोली जैल उ समाज परिवार और राष्ट्रक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकल।
1: आज की शुरुआत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान अवसर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान होंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम सपे अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए पारदर्शी और एक समान व्यवस्था लागू करी गई। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा और समाजक अवसरल सपे वर्गक नांतिनों के अगिन बढ़नक मौक मिलल। उन्होंने स्पष्ट करो कि प्राधिकरण की स्थापना कुएले समुदाय धार्मिक पहचान परम्परा और अधिकारों के प्रभावित करने के लिए नहीं करी गयो।
1: मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान परंपराओं या अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। हम चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहे और विज्ञान कंप्यूटर गणित भाषा कौशल विकास तथा आधुनिक तकनीकों में भी वो पूरी तरह से दक्ष बने। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के ऐसे मंदिर स्थापित हों जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, साथ ही बच्चों को आधुनिक वैज्ञानिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
0: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियानक भीतर मतदाता सूची परिवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमल आज कुमाऊं और गढ़वाल मंडलक मंडलायुक्तों को दगड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा करी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें कि मंडलायुक्त उ मतदान केंद्रों में जैबे निरीक्षण करो जहाँ यस मतदाताओं की संख्या ज्यादा छू और जनरल एल तक मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज नहीं पूछ सकें।

0: बूथ स्तर अधिकारियों के लिए निर्देश दें कि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची में शामिल हर मामले पर आवश्यक टिप्पणी कर बेर बूथ अवेयरनेस ग्रुपक सदस्यों को हस्ताक्षर ले सुनिश्चित करी जाओ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कि 14 जुलाई के प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद दावा और आपत्तियों को निस्तारण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करी जाली। प्रदेश में मानसूनल होण वाल तैयारियों थे निपटने के लिए काम करी गयो। राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजन करी जाली और जहाँ 13 जिलों 66 जागों में यो मॉक अभ्यास करी जाल जमे कई जागों पर पहली बार शामिल करी गई। मुख्यमंत्री आफी मॉक ड्रिल का निरीक्षण कराल। सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विनोद कुमार सुमनन बताए कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करण, उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों को प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करण व वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कामों में तैयारी परखण छू। उनलको कि यो अभ्यासक माध्यमल विभिन्न विभागों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और झट प्रतिक्रिया के माध्यम से परीक्षण करी जाल। दगड़े संभावित कमियों और चुनौतियों की पहचान कर बेर बखत पर उनर समाधान करी जाल जैल वास्तविक आपदा दौरान राहत और बचाव काम ज्यादा प्रभावी और भलो ढंगल संचालित करी जा सको।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखण्ड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं का आरोपक बाद देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र बांडे के तत्काल प्रभावल निलंबित कर दी गयो। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद उनर खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही ले शुरू कर हाली। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरा सिंह गर्बयाल जारी आदेशक अनुसार होम स्टे योजना तहत अनुदान राशि आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और अन्य सूचनाओं के आधार पर पहली नजरक आरोप सही पाई गई। मामलक जांचक लिजी परिषदक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के जांच अधिकारी नियुक्त करी गयो। राज्य कई जगह में 3 जुलाई जाने मूसलाधार बरखक चेतावनी जारी करेगी। मौसम विभागल पहाड़ी जागों में घोड़ाट मोड़ाट चाल चमकण और तेज है तेज बरखक अनुमान जता रखो। 30 है 40 किलोमीटर प्रति घंटक रफ्तार तेज बयावले चलनक चेतावनी दी रखी। यो बीच राजधानी देहरादून नगदगाड़ प्रदेश कई जगहों में बहुत तेज बर्फ भे। राज्य कई जगहों में गोंक ऊँ जान वाल बाट टूट गई और ब्याव जाने कई बाटों के ऊँ जानक लीजी फिर से शुरू कर हलो। राज्य आपदा प्रबंधन विभागल मौसमक स्थिति पर लगातार नजर बनाई छू। सचिव विनोद कुमार सुमनन को कि जो जागों में तेज बरखक अंता छू वहाँ SMS माध्यम अलर्ट भेजी जा रही।
2: बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के लिए अलर्ट है और 3 तारीख के लिए नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके क्षेत्र अधिकार में जो लोग रहते हैं उनको सावधान करें। इस चीज़ के लिए उनके द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं, सूचना की जा रही है विभिन्न माध्यमों से और हमारे यहाँ से भी सचेत के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं और SMS भी हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में अतिवृष्टि की संभावना है वह मैसेज भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा सुचारू है, चारधाम यात्रा मार्ग बुरी तरह से खुले हुए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
0: चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यो साल पर्यटकों का रिकॉर्ड भीड़ दर्ज करी गई। घाटी खुलने के बाद बैठे एक महीने के भीतर 7,294 पर्यटक यहाँ पूजिन जो पसिल छालक तुलना में बहुत ज्यादा छू।
3: पिछड़ एक महीने में 7,260 भारतीय और 34 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी में पूजी। प्रवेश शुल्क लगभग 11,06,000 डब्लॉक राजस्व प्राप्त है। पिछड़ वर्ष जेठक मेण में 3,898 पर्यटक एरो छी और लगभग 7,80,000 डब्लॉक राजस्व मिली छी। वन विभाग के अनुसार ये दिनों घाटी में अलग अलग दुर्लभ हिमालयी फूलों खिलन प्राकृतिक सौंदर्य खूब बढ़नो। पार्क प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार ध्यान दिनो। प्रवेश द्वार में पर्यटकों को प्लास्टिक मुक्त यात्रा और पार्कक नियमों की जानकारी ले दी जाने। वन विभाग कूर्चू की मानसून बखत अषाढ़ और सौण में

0: पहाड़ों की घाटी अपनी पूरी रंगत में है। यस में उड़ वाल दिनों में पर्यटकों की संख्या में आई वृद्धि होने की संभावना छू। आकाशवाणी देहरादून क्रिजी समाचार कक्ष बटी मी ज्योति जोशी।
1: और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। प्रदेश में आज बैठे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को नई व्यवस्था को उद्देश्य सपे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी और समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण छू। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान भीतर मतदाता सूची को परिवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाल। मानसून हुनवाल आपदाओं थे निपटने की तैयारी के परखण लीजिए। प्रशिक्षक 66 जागो में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करी जाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं का आरोप में देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे का तत्काल प्रभाव निलंबित करी गयो। और मौसम विभाग राज्य कई जागन में 3 जुलाई जाने मूसलाधार द्योग चेतावनी जारी करी। ये कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यों खत्म भयो। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:40 हुए, अब आपको ले चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर फिल्म संगीत के साथ।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म रन से। गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने, बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत से सजा है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आपने सुना रन फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारी से ये गीत। आवाज़ें हैं शान और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सुना दिल है तुम्हारा फिल्म से ये गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में ये अब सुनते हैं समीर का लिखा, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म हंगामा का ये गीत, अभिजीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे हंगामा फिल्म से यह गीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए अब सुनते हैं टशन फिल्म का यह गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गीत कौसर मुनि ने लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम के समापन पर टशन फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम के समापन में आइए अब सुनते हैं फना फिल्म का ये गीत शान कैलाश खीर की आवाज़ में। बोल प्रसून जोशी के हैं और संगीत जतिन ललित का।

कैलाश खेर और शान के गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोक गाथा भनारी नैत का अंतिम भाग। कलाकार हैं राम सिंह राणा और कृष्ण मोहन सिंह बिष्ट।

0: मोर कौन लारी कि हमार भाई मार हली भनारी ना दल तब घर में भुजिया तब जेबी धुर में
1: आप रत के लाई में फोन सर भरे लिखाने में भर टा नहर का बांग कमर जान लारी कमर का बांग नहर ओण लारी देवी धुर में भूलू रे मैया धुर।

भगवती आराधना कर्याज भगवती ज्वार्याज धनी देवताओ धनी ब्या बनी माता

अभी आप सुन रहे थे लोक गाथा भन्नारी नयत का अंतिम भाग। कलाकार थे राम सिंह राणा और कृष्ण मोहन सिंह बिष्ट। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 8:30 होने को है। अब कुछ ही देर में स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आज मेरे साथ हैं
1: प्रशांत कुमार। नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। अब स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
1: जी धर्मेंद्र, फीफा विश्व कप में फ्रांस, मेक्सिको और नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज इंग्लैंड का सामना कांगो से और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैच के सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सवालेंका महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सेनर का दूसरे दौर का मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक पदक पक्का।
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर बोल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मैक्सिको ने इक्वाडोर पर जीत के साथ 40 साल बाद नॉकआउट का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में स्वीडन पर फ्रांस की 3-0 की जीत में एक बार फिर किलियन एम्बापे सबसे बड़े स्टार साबित हुए। विश्व कप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एम्बापे ने 45वें मिनट में अलिसो के पास को गोल में बदल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 53वें मिनट में बैडल बारकोवा ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इसके 21 मिनट बाद फ्रांस के लिए तीसरा गोल फिर एम्बापे के जरिए आया और टीम की जीत लगभग पक्की हो गई।
3: One of the great goals. It certainly would have been, and the technical ability that you need to execute this is liquid gold. Michael Olise, absolutely wonderful to watch. And Mbappe, star after French star, how they twinkle! The love here is for their leader. Didier Deschamps, at a time of personal loss, enveloped by the players who looked at him.
2: इस गोल के साथ ही टूर्नामेंट में एम्बापे के 6 गोल हो गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी।
3: Absolutely sensational goal. So they've replied to one with one of their own. Oh, it's a lovely ball. For Berg, for Haaland. He rolled it into an empty net. He gets all types of goals, but they all count the same. And on the big stage, this is a mighty one.
2: सह मेजबान मैक्सिको भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। 1986 में अपने घर में खेले गए विश्व कप में बुल्गारिया को हराने के बाद पहली बार जब मैक्सिको ने नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। जूलियन क्विनेक्स और राउल जिमनेज ने विजेता टीम के लिए गोल किया।
3: Gallant effort. They're out by the narrowest of margins, and Norway will play Brazil.
2: हम आपको बता दें कि मेक्सिको की टीम 1994, 1998, 2002

0: 2006, 2010, 2014 और 2018 विश्व कप में लगातार 7 नॉकआउट मुकाबले हार गई थी। वही 2022 कतर विश्व कप में टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैंट।
1: प्रशांत, जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की बात भी क्यों करना कर लें?
2: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। एशिया के सबसे पुराने डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल 24 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें से 60 टीमें टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले 25 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 शहरों में खेले जाएंगे।
3: दुनिया के तीसरे सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज कोलकाता में होगा। फिर 4 सप्ताह तक टीमों के बीच मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में भी खेले जाएंगे। वर्ष 1888 में शुरू हुए डूरंट कप का फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में एक बार फिर इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग टीमें, सेना की टीमें, उभरती हुई घरेलू टीमें और विदेशी टीमें एक साथ खेलेंगी। 7 नई टीम में श्रीलंकाई सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी और मेघालय प्रीमियर लीग चैंपियन नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल का गढ़ कोलकाता एक बार फिर टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा, जहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण और किशोर भारती क्रीड़ांगण में 2 ग्रुप के मैच, उद्घाटन मैच, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल तथा फाइनल खेला जाएगा। ये शहर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल एफसी, मोहम्मदन एससी, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ, भारतीय सेना और नई टीम बागपत एफसी और समलेश्वरी स्पोर्टिंग की मेजबानी करेगा। रांची पहली बार डूरंट कप की मेजबानी करेगा, जहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक लीग मुकाबले और एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये शहर जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना और डिफेंडर्स एफसी की मेजबानी करेगा। उधर इम्फाल का खुमान लंपक स्टेडियम 28 जुलाई से 17 अगस्त तक लीग मुकाबलों और एक क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करेगा। इस ग्रुप में स्थानीय क्लब TRAUFC और निरोका एफसी, भारतीय नौसेना और पदार्पण कर रही एफसी रेंगडाई शामिल हैं। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक लीग मुकाबलों के अलावा एक सेमीफाइनल मैच होगा। इस मैदान पर शिलांग लाजोंग एफसी, नोंगसे एसएस एंड सीसी, लैंगसनिंग एफसी और पदार्पण कर रहा मुंबई एफसी खेलेगा। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम 1 से 13 अगस्त तक लीग चरण के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस ग्रुप की मुख्य टीम है, जिसमें एफसी 1 बोडोलैंड एफसी और कार्बी आंगलांग मॉर्निंग स्टार एफसी भी शामिल है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: दोस्तों, फुटबॉल की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 मैच की सीरीज की शुरुआत आज से चेस्टरली स्ट्रीट में होने जा रही है। आयरलैंड के हाथों पिछली सीरीज में 2-0 की हार के बाद अब हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की तेज उछाल भरी पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और क्या पिछली सीरीज में बेंच पर इंतजार करते रह गए वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। सुनिए ये रिपोर्ट।
4: श्रृंखला एक, सवाल अनेक। सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में मौका मिलेगा? क्या पिछली सीरीज में संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठाने और सूर्यवंशी को मौका देने का बड़ा कारण बन सकती है? टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहते, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पैक करने की बात कहकर काफी कुछ इशारा दे जाते हैं।
5: देखिए, अभी हर एक इंडिविजुअल जो टीम में खेल रहे हैं सबने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि एक अकेले इंडिविजुअल ने किया है, बट हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योरिटी हमें बिल्ड करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस रहे गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट्स। एंड जो लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जीता है डेफिनेटली उनको एक तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20 और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे हैं, तो फिर पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
4: सीरीज के शुरुआत के पहले भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशी ने इतना तो कह दिया है कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
6: He's absolutely ready to play international cricket. There's no doubt about that. But I think it's not a question to say you can leave Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago, a guy who's had a fairly good IPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a

0: long run in the team. So, you know, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you all to see him play.
1: सवाल तो ये भी है कि पिछली सीरीज में बेअसर दिखी भारतीय बल्लेबाजी तेज और उछाल वाली मुश्किल विकेटों पर मेजबान टीम को कितनी चुनौती दे पाएगी। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं, साथ ही आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिनर भी हैं। वैसे भी रिवर साइड ग्राउंड पर गेंदबाजी का दबदबा रहा है, यहाँ न्यूनतम स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है। जाहिर है सीरीज काफी कठिन रहने वाली है, इस बात को कप्तान श्रेयस अय्यर भी मानते हैं।
2: All of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there, getting acclimatized to the wicket, to the conditions, we fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there. And over here also, I mean, the dimensions are pretty much similar, but the ground is flat and you feel the vibe, you feel the stadium vibe, the crowd would be intense as well. We've played in such conditions, such situations before.
1: उधर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथिल, विल जैक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटन जैसे नाम हैं। आयरलैंड के खिलाफ ट्रैक से उतरी दिखी भारतीय गेंदबाजी की अब और कड़ी परीक्षा होने वाली है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स भी कसौटी पर कसे जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरलैंड से हार के बाद हतोत्साहित टीम में कप्तान श्रेयस को नया जोश और जीतने का जुनून भरना ही होगा, तभी इस कठिन सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम अपना दबदबा बना पाएगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: अब बात T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। ICC ने T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने लगभग एक साल से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए, साहिबजादा फरहान तीसरे, फिल शॉर्ट चौथे, पाथम निसंका पांचवें और तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं। वहीं बात अब महिला T20 क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया।
4: और प्रशांत, बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। प्रतियोगिता में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंडर 19 मिक्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के यिरेंग तांग और यी जियांग पर 11-9, 11-6, 11-7 की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई।
3: और अब बात विंबलडन पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के यानिक शिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस के साथ चल रहा है। सातवीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज देर शाम दूसरे दौर में मिस्र के स्टाफिनोस सित्सिपास के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में टॉप सीड सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गई है। नौवीं वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है।
4: और उधर भारत के बेलावन संथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर टूर मुंबई स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन से एक खबर है प्रशांत, जापान के यात्सुओ शिरो में भारत के ध्यान संतोष ने आज उलटफेर करते हुए थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नातात प्रेम पुंगवोंग को पराजित किया। संतोष ने लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में 21-17, 21-18 से जीत हासिल की।
3: और धर्मेंद्र, बॉक्सिंग से भी एक खबर आ रही है। भारत अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते खिलाड़ियों का मिला जुला दल उतारेगा। ये प्रतियोगिता 3-16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक

0: का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के

0: दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म लगान से। गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखिंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान किशोरी गुवारीकर और साथियों ने। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजा है ए आर रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म लगान का ये गीत। इंद्रधनुष कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए अब सुनते हैं हम हो गए आपकी फिल्म से ये गीत। गीत को आवाज दी है अलका याग्निक ने, गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

फिल्म गुरु का ये गीत। आवाज़ें हैं हरिहरन, अलका याग्निक, ए आर रहमान और असलम मोहम्मद की। बोल गुलजार ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन्स मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ प्रसून जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है, इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है। और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: तसुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ

गुरु फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

Çerçaka bir şehri. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का

0: कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
1: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
0: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया?
1: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
0: जी,
1: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
0: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं, भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
1: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
0: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं, तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी

0: किया गया है
1: जी
0: जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इससे ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का मैं अगर ई-कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इकोसिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजीली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इकोसिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी पुसुम जी ने बात किया कि AI कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ

0: इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ही सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है, और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे, और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है,
1: कर रहे हैं हम।
3: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं, तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे

0: इश्क अर्जित हुई।
1: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है। हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे। एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है। अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है। मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
0: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
1: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज। क्योंकि क्या हो गया, अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं। लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
0: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है। किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं, मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज़ करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है। इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में

0: ओएनडीसी पे ला रहे हैं, फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों, क्योंकि अगर हम हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से ही बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, अब समय हो चुका है सुगम संगीत का।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और चंदन दास का गाया ये नगमा। नगमा लिखा है सबा फाजली।

सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए अब सुनते हैं गुलाम अली का गाया ये नगमा।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए आप सुनते हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह को।
1: मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, एक गाने वाले थे, उनके पड़ोसी को भी एक दिन जोश आ गया तो वो उनके घर आए और बोलने लगे कि साहब आपका बाजा चाहिए। थोड़ी देर के बाद उनकी बीवी आई और बोली कि आपका तबला भी चाहिए। तो जब वो जाने वाली थी तो गाने वाले ने पूछा कि साहब आपके घर में कोई महफिल है या कोई गाने का प्रोग्राम है? वो बोली नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम जरा जल्दी सोना चाहते हैं आज। अब लीजिए पंजाबी के इस दौर से निकलें और फिर से आ जाएं गजल के दौर में। बहुत सी फरमाइशें हैं, सबसे पहले दो गजलें पेश कर रहे हैं, दोनों हम रदीफ गजलें हैं। चित्रा जी गा रही हैं सुदर्शन फाकर की गजल और मैं गा रहा हूं

चित्रा सिंह के गाए इसी नगमे के साथ हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय हो चुका है फिल्म संगीत का और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल गुलजार ने लिखे हैं और संगीत दिया है खयाम ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए आप सुनते हैं आंखें फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रवि ने दिया है और बोल साहिर के हैं।

0: कभी कभी
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर के लिखे बोल, संगीत जयदेव का है। फिल्म का नाम है हम दोनों।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए रन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। संगीत से सजा है नदीम श्रवण ने और गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में लीजिए सुनिए एक ही रिश्ता फिल्म से ये गीत, आवाज़ है उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत नदीम श्रवण का है और गीत के बोल समीर ललित हैं।

एक रिश्ता फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से ही बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long, six-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a four-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the